अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 बज रहे हैं और हम दोनों साथ साथ यहाँ पहुंच चुके हैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए।
1: ऐसा लग रहा है काफी लंबा वक्त हो गया ना साथ में बैठे
0: जी। बिल्कुल बहुत टाइम हो गया। तीन दिन से चल रहा है हम साथ नहीं बैठ पाए। देखिए दिक्कत कितनी है,
1: कितना मिस किया होगा ना हमें।
0: एक्चुअली लोगों ने मिस किया, बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि तुम दोनों जब शो करते हो तो बहुत मजा आता है ऐसे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।
1: रियलाइज हो इसीलिए बीच बीच में जो है ऐसा गायब
0: कभी कभी ऐसे छोटा सा वो देते कि हाँ। पता चले कदर है ना।
1: मम्मी ना जैसे घर पे करेले बनाती थी ताकि छोले भटूरे बने तो उसकी वैल्यू हो।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। जिंदगी भी आपके तरफ जो है कुछ करेले फेंकेगी ताकि जब छोले भटूरे आए तो उसकी वैल्यू हो।
1: यस,
0: तो ये जुजारू मोटिवेशन तो हमने दिया, ऐसा जुजारू मोटिवेशन आपके साइड से भी आना चाहिए। मैसेजेस कर दीजिए 3311063 पर अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड मॉर्निंग कोड्स, बताइए क्या हाल है। और देखिए वीकेंड करीब है, कल एक और दिन बचा है, उसके बाद तो फिर वीकेंड के लिए तो मैं यही बोलूंगा। भाई आज के दिन जिस भी इंसान ने जिंदगी में प्यार नहीं किया,
1: यस,
0: आज बिंदास मॉर्निंग सुन के वो यही सोचेंगे कि मैंने प्यार क्यों नहीं किया। एक तो हम आपसे प्यार करेंगे,
1: यस,
0: दूसरा ऐसे प्यारे गाने प्ले करेंगे ना कि आपको प्यार हो ही जाएगा।

0: तो भाई हौले हौले प्यार हम आपको करवा के ही रहेंगे यहाँ पे, वन सॉन्ग एट ए टाइम.
1: यस, वन सॉन्ग एट ए टाइम. एंड बाकी अगर आज कोई भी डेट पूछे तो बस यही बोलना, मैं तेरा.
0: तो यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे गाना प्ले करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में. कलंक मूवी का, कलंक का टाइटल ट्रैक है ये, और बहुत ही खास सॉन्ग है क्योंकि मूवी का जो पूरा स्टोरी है, जिस्ट है, वो इस गाने में भी दिख जाएगा आपको.
1: मुझे ऐसा लगता है इस गाने के वीडियो में थोड़ी थोड़ी उन्होंने मूवी डाली हुई है, बाकी पूरा बस इसी गाने को शूट किया है.
0: एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि काफी था खींच दिया, मगर कोई बात नहीं.
1: देखो सुदेव कुछ बोले और मैं उसमें ऐड ऑन ना करूं अपने फालतू जोक्स को, ऐसा हो सकता है क्या?
0: नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि मूवी में मूवी बनाने की जरूरत नहीं थी, वो गाने का एल्बम ही बना देते, चलता.
1: ठीक है, मुझे लगा मेरी
0: बेइज्जती. ऐसा नहीं, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे हम. वैसे क्यूट मूवी थी, बट मैंने ये पढ़ा था कि इस मूवी का जो पूरा स्टोरी है, इस गाने के लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उस पूरे स्टोरी को समराइज करता है पूरा गाना जो है. तो अगर आपने मूवी नहीं देखी, कोई बात नहीं, गाना सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: मेरे सूत्रों से खबर मिली है कि हौले हौले बहुत सारे लोगों को प्यार जो है होने लग चुका है, जिनका प्यार से भरोसा उठ चुका था उनको तक प्यार में भरोसा वापस आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि प्यार करना चाहिए, बिल्कुल प्यार करना चाहिए, मगर हमने ये नहीं बताया किससे। वो कैच है यहाँ पे,
1: यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। अगर आपको ऐसे किसी से प्यार हो जाए फिर आप बोले कि यार अब तो प्यार हो गया, आप बताओ आगे क्या करना है, तो देखो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
0: देखिए बात तो यही है, मेन बात तो मुद्दा तो यही है कि प्यार आपको किसी और से हो जाए उससे पहले आप खुद से प्यार करें।
1: बिल्कुल, हम तो इसी की बात कर रहे थे, सेल्फ लव की बात कर रहे थे। ऐसा ना हो कि आपकी मम्मी का लाए और बोले कि मेरे बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो।
0: ऐसे नहीं, ठीक है, हम बिगाड़ना नहीं चाहते, हम अच्छी राह में जो है उनकी जिंदगी को एक मोड़ देना चाहते हैं। क्या बात कर दी,
1: क्या बात कर दी।
0: तो लोग बोले कि पहले खुद की जिंदगी तो अच्छे मोड पर लेकर आओ,
1: कभी कभी लगता है खुद की नजर उतार लूं।
0: अरे क्या बात कर दी। यहाँ पे आए भाई मैसेजेस हमारे पास थोड़े थोड़े, सभी असाची का मैसेज आया है। उन्होंने मैसेज किया है और बोला है कि गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, थैंक यू। अरे यार सर मैम बोल देते तो आप, हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए। तनीषा कह रहा सॉरी, कशिश तो वैसे भी छोटी है।
1: फिर से
0: यार बड़े की बात की है तो तनीषा तो बड़ी है ना हमसे।
1: अच्छा
0: हाँ, वैसे
1: ये बात तो पता चलेगी कि आपने रेडियो पे बताई है।
0: बड़ी इन द बड़ी इन द सेंस लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हमसे बड़ी है। अब क्या वाला क्या उम्र की बात मैंने की नहीं, आप अलग ले जा रहे हो चीजों को। मैं कह रहा हूँ कि हम उतने बड़े नहीं हुए, कशिश तो अभी भी और छोटी है। ठीक है, उसने जिंदगी देखनी शुरू ही की है, तो आप ऐसे एकदम से मैम बोलोगे ना तो हमें लगेगा कि हमें हम ही है।
1: वी आर योर बॉडीज गाइस, आप हमें अपने दोस्त की तरह ट्रीट करिए।
0: जी बिल्कुल,
1: बच्चों की तरह ट्रीट करिए। अगर आप जो है ज्यादा और जैसे सुदेव ने कहा बहुत ज्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस होल्डर है तो।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऋषिन का मैसेज आया है, लिखा है टाइम And good friends are two things that become more valuable the older you get. बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, अच्छे दोस्त और वक्त जो है और हमें अच्छा लगने लग जाता है और हम वैल्यू इनकी और पहचान लेते हैं। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि अच्छे दोस्तों की और वक्त की जो कीमत है, जो वैल्यू है इनकी, वो हमें और अच्छे से समझ में आती है। उसके लिए वक्त लगता है, दैट इज दी पैराडॉक्स ऑफ दिस थिंग। और जुल्फी भाई का मैसेज आया, लिखा है चैलेंजेस मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल, Always remember that life without struggle is a life without success. Don't give up and learn not to quit. और अगर कोई quit करना चाहता है, मैं एक ही सलाह दूंगा कि आज मत करो, कल देखते हैं। ठीक है, कभी भी quit करने का मन करे किसी भी चीज से, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अपने प्रोजेक्ट में लगे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आज quit मत करो, कल करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता और क्विटिंग भी नहीं होगी फिर।
1: बिल्कुल।
0: और उसके साथ साथ एक और मैसेज आया है शशिकांत पाटिल जी का, उनका मैसेज भी जरा हम देख लेते हैं। उन्होंने भेजा है कि मॉर्निंग ग्रीटिंग्स डजंट ओनली मीन सेइंग गुड मॉर्निंग, इट हैज अ साइलेंट मैसेज सेइंग I remember you when I wake up. Have a nice day. वाह वाह सर जी, ये कर दिया आपने बिल्कुल तालियों वाली बात। जनता बवाल मच गया जनता के बीच में, पैरों तले जमीन खिसक गई। और यहाँ पे आया है अबरार भाई का भी एक मैसेज, वहां जहां भी उन्होंने एक फोटो भेजा है और बहुत ही प्यारा फोटो भेजा और उसमें लिखा है एवरी सनराइज इज अ रिमाइंडर दैट गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर वरीज। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और नाजनीन जी का भी मैसेज आया है जहां पे लिखा है कि वेक अप नोइंग यू आर वैल्यूड अप्रिशिएटेड एंड लव्ड डीपली गुड मॉर्निंग करके। अरे अरे अरे बहुत ही प्यारा सा क्यूट एक मैसेज जो है आया है, थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप लोगों ने मैसेज किया और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया, फील गुड मैसेजेस आए, बहुत अच्छा लगा हमें। अब सवाल के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ी ही देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो सवाल लेकर आएंगे, तो देखते हैं कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने तेज है। यस, आर यू रेडी?
1: आई एम रेडी।
0: कैसा लग रहा है कुछ दिनों बाद ऐसे सवाल?
1: मैंने पूरे तीन दिन जो है प्रैक्टिस की है।
0: अच्छा,
1: मैंने जो है किताबें पढ़ी है, जनरल नॉलेज की। अब अच्छा, अगर ये बाहर से पूछ ले,
0: वही यहाँ पे पन्ने फटे हुए लग रहे थे मुझे।
1: अंडरलाइन हाईलाइट सब करके रखा था, अगर आज वाला जवाब मैं नहीं दे पाई तो फिर तो मुझे गूगल खाना पड़ेगा।
0: क्या
1: गूगल खाना?
0: अच्छा गूगल खाना पड़ेगा, गुजरात मुगल खाना खाना पड़ेगा। मैं बोलने मतलब यहाँ नहीं मिलता, वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा, पुरानी दिल्ली से। बट एनी वे यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो फिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आज इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है प्यार के बारे में कि हमें एक मैसेज भी आया ऑल द वे फ्रॉम इंडिया सेल्फ केयर के बारे में, प्यार के बारे में. जरा बताइए हमें कशिश मैडम.
1: सो सेल्फ केयर और प्यार के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो मेरी पर्सनल मासी जी.
0: पर्सनल मासी जी, प्रोफेशनल मासी जी कौन है आपकी?
1: देखिए, इस बारे में मैंने अपनी सोशल मीडिया पे भी बात करी है कि हमारी लाइफ में फैमिली को छोड़ के भी बहुत सारी मौसी चाचियां होती हैं.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है, जिन्हें हमसे बहुत लेना देना होता है. तो ये वाली बात मैं रेडियो पे नहीं करना चाहती.
0: ओके ओके. अरे आ गया, मुझे लगता है कमरुनिसा जी.
1: यस,
0: वैसे बता दूं नाम बहुत यार, ये आपके फैमिली में जितने भी औरतें हैं इनके नाम बहुत ही अच्छे हैं.
1: मम्मी का नाम बहुत खूबसूरत है. नाम जो है निशा है. सो निशा का मतलब उर्दू में होता है लेडी.
0: अच्छा.
1: एंड उसके आगे कोई भी वर्ड जो है वो जुड़ जाता है, जैसे मेहरुन निशा जो है, इट मींस खूबसूरत औरत.
0: अच्छा अच्छा.
1: ठीक है, खुशबू निशा इज लाइक जिसके पास से बहुत खुशबू आती है. कमरुन निशा का भी मतलब ऐसा ही कुछ होता है.
0: ये आपकी मौसी लगती है ना?
1: ये ऐसी मेरी मौसी.
0: देखो मौसी, नाम का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, माफ कर दिया इस बार हमने. बट मौसी ने मैसेज भेजा, लिखा, गुड मॉर्निंग, स्टार्ट योर डे विथ लव फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू डिजर्व द सेम केयर, काइंडनेस एंड हैप्पीनेस दैट यू गिव टू अदर्स. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. और बहुत ही प्यारा लिखा है. उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया संधू भाई का.
1: अच्छा.
0: संधू जी ने मैसेज किया है, लिखा है, गुड मॉर्निंग ब्रो, हैव अ नाइस डे. हरपाल संधू फ्रॉम दुकान. हरपाल जी की हालचाल? सब बढ़िया. बताइए हमें क्या आज कैसा चल रहा है वहाँ पे. और दुकान दूर है यार यहाँ से बहुत
1: है?
0: हाँ दूरी है ना, दूर तो. हाँ मेरे लिए तो दूरी है, मैं तो बकरा में रहता हूँ, मेरे लिए तो बहुत दूर है. हाँ एक्चुअली दूर है यहाँ से, एक्चुअली एक एंड में है. और मैं उम्मीद करता हूँ संधू जी की सब बढ़िया चल रहा है. और यहाँ पे जो है सवाल लेकर आए हैं हम. सवाल पूछने का वक्त आ चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में. इस सवाल के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी कल.
1: अच्छा,
0: देखते हैं वो सवाल क्या है.
2: रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंस ब्लैक बोर्ड स्टोरीज.
0: तो भाई ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में यूजुअली हम जीके का सवाल पूछते हैं, जहाँ पे हम जवाब में कोई प्लेस, कोई किसी जगह का नाम, किसी का फुल फॉर्म ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं. मगर आज हम यस और नो में आ चुके हैं.
1: ओफ,
0: ठीक है, कशिश के लिए है सवाल यस और नो.
1: ठीक है, इतनी पढ़ाई जीके की और आज बोल रहे हैं कि हम जनरली जीके से सवाल पूछते हैं.
0: जीके का ही सवाल है, जीके का ही सवाल है, बट यस और नो में बोल रहे हैं.
1: ठीक है,
0: सवाल ये है, आईफिल टावर जो है, गए हो आप?
1: नहीं,
0: मैं भी नहीं गया. कुछ लोग गए होंगे, बट जिन्होंने देखा है बहुत बढ़िया भाई, हमने देखा है गूगल अर्थ से. बस तो आईफिल टावर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में है या नहीं, ये आपको बताना है. आईफिल टावर जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में है या नहीं. आपके चेहरे पे कंफ्यूजन क्यों आ गया एकदम?
1: क्योंकि क्योंकि ऐसे कौन पूछता है, आपका नाम कशिश है कि नहीं, हाँ या ना? देख, अरे मैं एक बार को उसमें भी सोचूंगी.
0: ठीक है, कोई बात नहीं. बट anyway, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, आईफिल टावर जो है वर्ल्ड के जो वंडर्स है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें आता है या नहीं. और 7 की बात किया तो साला फॉर अ रीजन.
1: कोई बात नहीं, 8th वंडर आपके साथ बैठी है.
0: अभी फिलहाल ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो. 3311106 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, बता सकते हैं. और अगर आपका जवाब सही है तो आपको मिलेगा ढेर सारा प्यार,
1: बहुत सारा प्यार.
0: और अगर आपका जवाब गलत है तो टेंशन नहीं, हम बता देंगे. और असीमित प्यार के लिए तैयार हो जाइए. यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं नमस्ते लंदन का एक बहुत ही बढ़िया गाना. इस गाने के साथ एक साथ बैठ कर वाइब करते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
0: रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: अरिजीत सिंह और शाशा त्रिपति की आवाज में सुना हमने अतरंगी रेखा गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई सवाल पूछा गया था, हमने पूछा था कि बताइए ये आईफिल टावर जो है क्या ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में है कि नहीं, और अली भाई का ऑडियो आया है, जरा सुन लेते हैं।
2: नहीं,
0: तभी के तभी इन्होंने ऑडियो भेज दिया था हमें जब हम बात कर रहे थे, बहुत ही क्या कहते हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स
1: कहते हो तुरंत से पहले।
0: हाँ तुरंत से पहले, इस बार मेरे तुरंत से पहले के बोलने के पहले
1: हम बोलेंगे तुरंत से पहले नहीं, अली भाई से पहले जो है आप रिप्लाई करिए हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सरिता जी का मैसेज आया, सरिता जी ने बोला गुड मॉर्निंग यू बोथ, आंसर नो है जी, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उन्होंने ये भी लिखा है एक्चुअली माय ड्रीम है 7 वंडर्स देखने के लिए, मेरे घर में एक वर्ल्ड का मैप है, जहां भी विजिट करती हूँ उस प्लेस पर बिंदी स्टिक कर देती हूँ, लास्ट दिसंबर पेट्रा जॉर्डन हुआ था। वाओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो आपका ये जो ड्रीम है वो जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी आप जो है 7 जगह को देख पाओ, क्योंकि 7 तला फॉर अ रीजन। देखिए इस दुनिया में 7 समंदर है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 वंडर है, और 7 नंबर की जर्सी पर एक महान बंदा है, तला फॉर अ रीजन।
1: कहाँ
0: हम सबके दिल में
1: दिल में होने से देखिए मैच नहीं जीते जाते,
0: मैच तो जीते जा रहे हैं वैसे अभी
1: उस बंदे की वजह से नहीं जीते जा रहे हो,
0: जीते जा रहे हैं ना उससे मतलब है हमें। और एक और मैसेज आया है हमें, मैसेज भेजा सलमान भाई ने, लिखा है भाई सवाल हिंदी में पूछ लेते, 7 अजूबे में आता है आईफिल टावर। उन्होंने ये बोला, यस सॉरी भाई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि मैं हिंदी में भी पूछूं, यूजुअली मैं करता हूं बट आज मेरे दिमाग से निकल गया, मैं माफी मांगता हूं। और आपने जवाब भेजा है यस ओके। और मुझे एक और मैसेज आया है, कशिश की मासी, मैं ऐसे ही बुलाऊंगा मैंने, कशिश की मासी। तो कमरनीसा जी ने भी मैसेज किया है, उन्होंने बोला है यस नहीं नो, आईफिल टावर इज नॉट इन 7 वंडर्स लिस्ट। तो मेरे पहले मैसेज का जवाब उन्होंने यस दिया था, बट या उसके बाद मुझे एक और मैसेज आया है सज्जाद भाई का, लिखा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, आंसर इज नो, and Allah bless you both, long life and good health, ameen, thank you so much. आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी लंबी जिंदगी और सेहत भरी जिंदगी जो है मिले। और मेहरुनिसा जी का भी मैसेज आया है, कशिश की मम्मी का भी मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग कशी एंड सुदेव, बहुत दिनों बाद दोनों की आवाज एक साथ, जी हाँ आज तो है, आज तो हवा अलग दिशा में बहने लग गई, बोलेगी अब आ रहा है मजा बहने में, इतने दिनों में वो फील नहीं आ रही थी, मगर हाँ आज
1: अब लग रहा है यार। देखो सुदेव, हमें 8वां वंडर जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा अब।
0: जी जी जी जी
1: जल्दी।
0: और यहाँ पे एक और मैसेज आया हमारे पास पल्लव जी का, पल्लव जी ने लिखा है सुप्रभात आप दोनों को, आईफिल टावर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। तो कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने बोला है नहीं है, एक्चुअल आंसर है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आया है, मुझे अली भाई ने एक्सप्लेनेशन भेजा है, और उसके साथ साथ मुझे सरिता जी ने भी एक्सप्लेनेशन भेजा है, और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया था जिसमें एक्सप्लेनेशन आया था, एक अभी वो लोड नहीं हो रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि आईफिल टावर कई बार जो है कंसिडर लोग करते हैं कि वो है, मगर ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है, अनऑफिशियली उसे कई लोग 8th वंडर भी मानते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस में से एक भी है आईफिल टावर, मगर वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में, ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने यस आंसर भेजा है वो गलत है, मगर कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं, छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या दिक्कत है, आपके लिए भी तालियां और जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए भी तालियां, क्योंकि भाई एफर्ट लगता है जवाब देने में, बिल्कुल सही बात किया, तो एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में भी एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एफर्टलेसली हम गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, इस मामले में कोई एफर्ट नहीं लगता अपने को, ठीक है, ये मामला एफर्टलेस होना चाहिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर में जब आएंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ऑब्वियसली वेदर की बातें करेंगे ही करेंगे, मगर एक बहुत ही खास चीज के बारे में, हमारे हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही खास चीज के बारे में नेक्स्ट आवर में हम बात करने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या कर रहे हैं, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, अभी जाइए, अभी गाड़ी चला रहे तो कोई बात नहीं, मगर अगर गाड़ी नहीं चला रहे तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए, एक ही बार दबाना है, और कंटेंट देखिए आप, अपने फीडबैक्स बताइए। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 7:05 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई चलिए मौसम का हाल जरा जान लेते हैं। और अभी जो टेम्परेचर है वो है 32 degrees Celsius और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 40 degrees Celsius, लोएस्ट जाएगा 30 degrees Celsius और हवा बह रही है 4 kilometers per hour की रफ्तार से। बहुत धीरे से बह रही है मगर फिर भी मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा कशिश के सर के टोपी को उड़ा के ले जाएगी।
1: मेरे होश उड़ गए हैं इस वक्त बिकॉज 40 degrees।
0: हाँ, नॉर्मल बात है।
1: मतलब नॉर्मल है वो, बट फिर भी कल जो है कुछ 37-36 degrees Celsius था एंड मैं जो है गलती से बाहर निकल गई थी एंड सच में मुझे इतना डिजी फील हो रहा था, इतना डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था। तो मैं तो आप लोगों से कहूंगी प्लीज पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, सनस्क्रीन लगा के जाओ एंड कुछ ना कुछ ऐसे सर पे रख के जाओ टोपी जैसा, क्योंकि सर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था यार। मुझे थोड़ी देर तक ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था। सो 40 degrees Celsius तो और ज्यादा एक्सट्रीम है।
0: चलो
1: और जो हवा चल रही है वो भी बहुत गर्म
0: हवा चल रही है। गर्म हवा का झोंका आगे लगेगा आपके चेहरे पे जो एक स्लैब से कम फील नहीं होगा। और यहाँ पे एक मैसेज आया है, लिखा है बिंदास मॉर्निंग, सुबह की रोशनी में एक नई सी बात है, हर तरफ खुशियों की सौगात है, ना गम की परछाई ना फिक्र का साया, आज का दिन कह रहा है चलो बिंदास जिया जाए। ये भेजा है कमरुनिसा जी ने। आज तो फॉर्म में है,
1: ये समर वेकेशन शुरू हो गई है सारी टीचर्स की।
0: हाँ भाई
1: अब जो है
0: अब तो फॉर्म अलग लेवल पे। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपने भेजा। और उसके साथ साथ इदरीस भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी हमें जो है फोटोज भेजे हैं थोड़े। और इदरीस भाई भी जो है आज हमारा पैटर्न समझ गए, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले ही भेजने लग गए,
1: पहले भेज गए, उनको आदत हो गई। अब देखिए हम बस यही चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ का जो है हिस्सा बन सके और आपको याद रहे। हाँ। यार ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है, फोटो खींच लेता हूं, सुदेव और कशिश को भेजनी है।
0: जी बिल्कुल, ऐसे ही जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं आप भी जो है हमें फोटोज भेज सकते हैं 3311106 पर। बाहर का कैसा है माहौल, आसमान कैसा लग रहा है और ये सब आप जरा फोटो खींचिए, एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉलपेपर वाली फोटो भेज दीजिए हमें, बहुत ही खुशी मिल जाएगी हमें। हम दो छोटे बच्चे यहाँ पे स्टूडियो में खुश हो जाएंगे जी, मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे। बट ये अच्छा लगेगा हमें, आप जरा जल्दी जल्दी फोटोज भेज दीजिए। यहाँ पे चांद मेरा दिल
1: हाय हाय
0: गाना प्ले करेंगे हम फहील अब्दुल्ला की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।
3: हाय हाय।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं आपकी कशिश। अंगड़ाई लेते हुए
0: यार मेरे ना हाथ मतलब ट्राइसेप्स में दर्द कर रहे हैं
1: यार। ऐसे ही होता है, एक्सरसाइज कर लेते कभी कभार लोग थोड़ी बहुत।
0: नहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था एक्चुअली, ना बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उठा के इधर रखा था।
1: यार ये बात सबको नहीं पता यार, आप बोल देते फ्लेक्स कर देते तो क्या हो जाता।
0: नहीं हम ऐसे झूठे फ्लेक्स नहीं करते, जब भी झूठा फ्लेक्स किया हम पकड़े गए। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मसल बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी कुछ टाइम से मसल बिल्ड कर रहा हूँ, पेट के मसल बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो चुका है तो इट्स गुड।
1: यस, मेहनत रंग ला रही है, मेहनत रंग ला रही है जो हम कर रहे हैं
0: जी,
1: वो रंग ला रही है। सो बस आप लोगों का प्यार चाहिए इस रंग, मेहनत वाले रंग के साथ। तो प्यार आया है प्यार,
0: बिल्कुल आया है प्यार, आया है। यहाँ पे हमें अल वखरा बीच से मनोज जी ने फोटो भेजा है, गुड मॉर्निंग भेजा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल वखरा बीच भाई, बहुत ही बढ़िया नजारा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उनका एक और फोटो जो उन्होंने बहुत दिन पहले भेजा था, मैं अभी ऐसे देख रहा था, तो उनके ऑफिस का व्यू भी काफी बढ़िया है यार। मतलब मनोज जी मानना पड़ेगा यार, सही है, आप एकदम नए नए व्यूज भेजते हो, मैं थैंक यू सो मच जी। और सामी भाई का भी मैसेज आया।

0: है, सामी भाई ने जो है फोटो भेजा है और लिखा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई। सुदीप भाई और कशिश कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बढ़िया
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है बस
0: बस और क्या चाहिए। और यहाँ पे और इदरीस भाई ने तो ऑलरेडी हमें बहुत सारे फोटोज भेजे थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोज, और मजा आ गया। बिल्कुल अब जो रोशनी आई है हमारे दिन में बहुत ही अच्छा लगा। और इदरीस भाई ने हमें फोटो ये टैग करके भेजा कि ये वाला आप वॉलपेपर के लिए यूज कर सकते करके नया फोटो भेजा। भाई ये बहुत बढ़िया है, ये पर्ल के आसपास का एरिया है, बहुत ही प्यारा फोटो। थैंक यू सो मच। ये फोटो देखिए
1: लग रहा है अब ना फोटो भेजे लोगों ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। सो मैंने एक ना जिस दिन आप नहीं आए थे ना, अभी परसों की बात है, एंड उस दिन ना इतनी परफेक्ट फोटो किसी ने भेजी थी, ऐसा लग रहा था AI से बनी हुई फोटो है।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: लिटरली इतनी ग्रीनरी, ऊपर से वो पाम वाले ट्री लगे हुए हैं। हाँ। और ऐसा कि ये तो पूरी AI है यार, लोगों ने कंपटीशन बना लिया है इसको।
0: नहीं मगर मैं बता रहा हूँ, ये कंपटीशन मत समझिए, आप अपना प्यार हमें भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये फोटोज देख के, सही में दिल खुश कर दिया, क्योंकि हम दोनों जो हैं बहुत ही नेचर लवर्स हैं।
1: एंड हमें ना इस स्टूडियो के अंदर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आप लोगों की वजह से हम बैठे हैं कि आपसे बात करनी है। तो बस आपका भी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें जरा बाहर के नज़ारे दिखाते रहे टाइम टू टाइम। बस अभी भी अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे, कहीं रुके हुए हैं, तो जो है आप एक पिक्चर जो है क्लिक करके हमें भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, थोड़ी ही देर में जब हम आएंगे तो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात जो है फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए लेकर आएंगे। मगर ये भी बता दें कि एक गाना भी आपके रेडियो सेट में आने वाला है थोड़ी ही देर में।
2: अंजन की सिटी में मारो बम डोले।
0: उसके साथ साथ शान और साधना सरगम की आवाज में ये वाला गाना भी आने वाला है।
2: चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली।
1: ये गाना सुन के ना रिसेप्शन पार्टीज होती थी ना,
0: यस
1: वो याद आ जाता है।
0: अभी फिलहाल एक काम करते हैं, हम एक बहुत ही प्यारा सा जबरदस्त हिट सुनते हैं।
2: खिलड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे।
0: तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले आप अपने मैसेजेस भेजते रहिए और यहाँ पे गाने सुनते रहिए, कहते रहिए
1: जियो बिंदास।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास से किसी के पास भी अगर सनाया हेल्थ सेंटर का लोकेशन है तो जरा भेज दीजिए। हमारे एक लिसनर हैं जो चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं वहाँ पे। अगर किसी के पास भी सनाया हेल्थ सेंटर का लोकेशन है तो प्लीज हमें 3311063 पर अभी के अभी भेज दीजिए। बहुत खुशी होगी और किसी को हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू।

0: khatam.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और भाई यहां पे जो है फिट है तो हिट है में बात करने का वक्त आ चुका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में।
2: फिट है तो हिट है।
0: हम सब जानते हैं कि भाई मसल के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: yes.
0: तो प्रोटीन बिफोर स्लीप मसल रिकवरी को कैसे सपोर्ट करता है, इसके ताल्लुक के बारे में जो है, इस ताल्लुक के बारे में बात करना चाहिए। क्या बात कर दिया आपने। मगर ऐसे नहीं प्रोटीन बढ़ाना आपको, आपको प्रॉपर सोर्सेस लेने हैं प्रोटीन के। रिसर्च ये दिखाती है कि सोने के दौरान बॉडी जो है नेचुरली रिपेयर और रिकवरी मोड में होती है। इस टाइम में मसल्स को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है ताकि वर्कआउट के बाद हुआ माइक्रो डैमेज रिपेयर हो सके। तो मैं और कशिश यही सोचते थे कि वर्कआउट के बाद का माइक्रो डैमेज,
1: अगर वर्कआउट नहीं कर रहा हो
0: तो फिर उसके बारे में बताया नहीं। मगर ये अज्यूम किया जा रहा है कि एवरीबॉडी यू नो वर्क्स आउट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं मूवमेंट बॉडी को अच्छी तरह मिल रही है।
1: वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता कि आपको जिम जाना है। वर्कआउट का मतलब ये है कि अगर आप अपने 6,000 या 10,000 स्टेप्स जो है वो पूरे कर रहे हैं, या एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपने ली हुई है, या अपना फेवरेट स्पोर्ट जो है वो आप खेल रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, वो सब जो है काउंट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बेड टाइम के अराउंड स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन जैसे कि मिल्क, योगर्ट, पनीर ऐसी चीजें लेते हैं तो अमीनो एसिड्स को स्लोली ओवरनाइट रिलीज करता है। इससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है सपोर्ट होता है, ओवरनाइट मसल ब्रेकडाउन कम होता है, रिकवरी और रिपेयर बेटर होता है।
1: Yes.
0: और स्टडीज ने ये बताया कि स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स में ये शो करता है कि प्री स्लीप प्रोटीन नेक्स्ट डे रिकवरी और मसल मेंटेनेंस को इंप्रूव कर सकता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया कि हैवी ऑयली मील नहीं खाना है, लाइट प्रोटीन फोकस्ड ऑप्शन बेटर होता है ताकि स्लीप डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि वार्म मिल्क ग्रीक योगर्ट। क्या हो गया मुझे, मैं भूखा हो गया लगता है ये सब पढ़ पढ़ के। पनीर ने मेरे जमीर पे जो है वार कर दिया है। तो मोटी मोटी बात ये है कि सोने से पहले स्लो प्रोटीन जो है बॉडी को ओवरनाइट रिपेयर फ्यूल प्रोवाइड करता है, तो ये चीज जो है आप डाइट में कंसिडर कर सकते हैं। यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.

0: सूरतदार आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
5: Hey, this is Ileana De Cruz.
6: This is me, Hrithik Roshan.
7: Hi, I'm Alia Bhatt.
8: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुजय
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: यहां पे भाई कल का जो मैच था मैं काफी एक्साइटेड था कि कैसा होने वाला है। मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि हैदराबाद जो है इजीली जीत जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी वही दिखा रही थी, मगर गुजरात ने क्या खेला यार, क्या खेला,
1: क्या देखो? खेला
0: गुजरात ने 168 रन स्कोर किए, ठीक है, पांच विकेट गिर गए थे उनके, 20 ओवर खत्म हो गए, और SRH को यानी कि हैदराबाद को चाहिए था जीतने के लिए 169 रन, 86 में ऑल आउट।
1: मैं मुझे ये सेम स्कोर दिख रहा है, ठीक है, और मैं बार बार उसको जो है रिफ्रेश कर रही हूँ कि ये जो है बीच मैच में अटका हुआ
0: ये
1: है,
0: नहीं हो सकता
1: ऐसा,
0: ऐसे
1: कैसे हो सकता है?
0: अब भी हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में।
1: हैदराबाद जैसी टीम जिससे जो है सबको उम्मीद थी, और जब मैंने जो है चैट जीपीटी से पूछा है, जब भी पूछा है कि हैदराबाद का मैच जो है वो इस टीम के साथ है, तो हमेशा उसने कहा है कि यार हैदराबाद के जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा है,
0: बिल्कुल।
1: एंड अगला कट मैं ये देख रही हूँ चैट जीपीटी पे स्कोर, ओ माय गॉड, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बफर कर रही थी कि स्कोर कहाँ लिखा है।
0: देखिए मैं थोड़ा स्कोर के बारे में डिटेल में बताता हूँ। इनके दो ओपनिंग बैट्समैन है ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रैविस हेड तो जीरो में आउट हो गए थे, अभिषेक शर्मा 6 रन बना के गए थे, ईशान किशन उन्होंने भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की मगर 11 रन से ज्यादा कर नहीं पाए। फिर आए स्मरण रविचंद्रन, उन्होंने 9 रन स्कोर किए। हेनरिच क्लासन आए जो काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है मगर वो भी 14 रन के ऊपर नहीं गए। और उसके बाद हम देखे सलील अरोरा 16 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 2 रन, पैट कमिंस जो कैप्टन है 19 रन, शिवांग कुमार ने 4 रन, प्रफुल्ल ने 3 रन और एहसान मलिंगा बच गए थे। तो बेसिकली 20 रन के ऊपर किसी भी प्लेयर ने नहीं बनाए कल के मैच में हैदराबाद के बैट्समैन में। अगर हम देखें गुजरात की बात करें तो साई सुदर्शन जो इनका ओपनर है काफी बढ़िया बैट्समैन, उसने सीधा भाई 61 रन स्कोर किया। अब देखिए गुजरात का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर नहीं है मगर अपने बॉलिंग से उन्होंने हैदराबाद को इतना अच्छा एक वो रेस्ट्रिक्शन दिया, डोमिनेट किया कि क्या बताएं।
1: और हैदराबाद की बैटिंग जो है वो बहुत बढ़िया चल रही थी और उसको अपनी बॉलर से जो है इतना सप्रेस करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है।
0: यहाँ पे कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए, जेसन होल्डर ने 3 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा जो इम्पैक्ट प्लेयर थे उन्होंने 2 विकेट लिए, राशिद खान ने 1 विकेट लिया और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। काफी बैलेंस्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली। अब देखते हैं आज के मैच में कौन कौन आता है। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज जो है आपको बताना चाहूंगा, स्टैंडिंग्स के बारे में जरा देखते हैं। अभी गुजरात जो है टॉप पे चली गई, गुजरात अभी 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लास्ट के सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं, 5 मैचेस जीते हैं उन्होंने। बैंगलोर सेकेंड पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन पे है हैदराबाद, फोर्थ पोजीशन पे है पंजाब और फिफ्थ पोजीशन पे है चेन्नई। तो यानी कि चेन्नई को सारे मैचेस जीतने हैं, अब ऊपर वालों के सारे मैचेस हारने, ठीक है, हार जाओ। देखो हैदराबाद तो हारने लग गई, ऐसे हारते रहो प्लीज। तो
1: देखते हैं गाइस, आज जो है बड़ा ही खास मैच होने वाला है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, जब मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना तब अगले दिन कुछ ना कुछ मैच में गड़बड़ हो जाती
0: है। उल्फत हो गया,
1: मैं नहीं बोलूंगी कि कल जो है किसको जीतना चाहिए, थोड़ी देर में आकर हम बताएंगे कि कल किसका मैच है,
0: आज किसका मैच है,
1: सॉरी आज किसका मैच है, सॉरी मेरा एक दिन स्किप हो गया ना अभी,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: तो आज किसका मैच है उस पर बात करेंगे थोड़ी सी देर में, और आपको क्या लगता है ये भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक ये अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सच पर से, एंजॉय कीजिए
0: और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हम बात कर रहे थे मैचेस के बारे में, लीग मैच के बारे में। आज जो है बैंगलोर वर्सेस कोलकाता का मैच होने वाला है और यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो 58% है बैंगलोर का और कोलकाता का है, बाकी बचा हुआ 42%। और यहाँ पे अगर हम स्टैंडिंग्स में देखें कि दोनों टीम कहाँ पे है, तो 8वें पोजीशन में है कोलकाता और दूसरे पोजीशन में है बैंगलोर। तो कोलकाता अगर ये मैच जीतती है तो 7वें पोजीशन में आ जाएगी, थला फॉर अ रीजन।
1: कितना डिसइंटरेस्टेड होकर
0: है ना,
1: है ना?
0: बैंगलोर अगर ये मैच जीतती है तो फर्स्ट पोजीशन में चली जाएगी, 16 पॉइंट्स जाएंगे, गुजरात के सेम पॉइंट्स होंगे, मगर रन रेट जो है ज्यादा है बैंगलोर का, प्लस 1.103 है। तो सेम पॉइंट होने के बावजूद भी फर्स्ट पोजीशन में जाने के चांसेस हैं, और अगर वो मैच जीत जाती है तो फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करेगी और उनके प्लेऑफ में जाने के जो चांसेस है और सॉलिडिफाई हो जाएंगे।
1: यस, अब करो विनर फॉर अ रीजन।
0: क्या
1: विनर फॉर अ रीजन?
0: अरे एक ही बार जीत के क्या उछल रहे हैं यार, अभी वक्त है। ठीक है,
1: तो एक और बात कहनी चाह रही थी मैं कि रायपुर में ये मैच जो है वो खेला जाना है। रायपुर की पिच जो है वो काफी बोलिंग वाली जो पिच है वो कही जाती है, सो इस बार बैट्समैन लोगों से जो हमारी उम्मीदें हैं वो रखी थोड़ी सी मुझे लगता है कि कम होगी। बट अगर बोलिंग अच्छा खेल गए तो फिर देखो कोई भी जीत सकता है। कोलकाता आपको रायपुर की पिच जो है वही अब बचवा सकती है। देखिए
0: देखिए कह नहीं सकते क्योंकि अगर हम बात करें कोलकाता की तो इस बार थोड़ा ढीला खेल रही है वो।
1: yes.
0: मगर थोड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके टीम में, सुनील नारायण हैं जो जादू कर सकते हैं बॉल से, और उसके साथ साथ अगर उनका बॉलिंग अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग अटैक तो नहीं है।
1: ये तो हमें तभी समझ आ गया जब आपने ऐसे स्ट्रॉन्ग और ये जो सर्च करते हुए आपने बोला है, मैं देख पा रही हूँ सुदेव बहुत मेहनत कर रहे हैं उनका बॉलिंग लाइनअप जो है वो ढूंढने की। बट जब इतना इम्प्रेसिव बॉलिंग लाइनअप नहीं होता है तो हमें नहीं याद रहता है। तो
0: इम्प्रेसिव की बात नहीं है, बात यह है कि इम्प्रेसिव की बात नहीं है, इनमें जो भी बॉलिंग के लिए लोग हैं ऐसा नहीं कि ये लोग बुरे बॉलर्स हैं। मतीशा पतिराना काफी अच्छे बॉलर थे क्योंकि पिछले एडिशंस में चेन्नई के लिए मैचेस बदले हैं उन्होंने। उमरान मलिक भी काफी अच्छे बॉलर हैं, ये दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं जो सही में मैच का जो रुख है वो बदल सकते हैं। और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती जो है इनका एस ऑफ स्पेड है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती उसके साथ साथ अगर बहुत ही स्मार्ट तरीके से सुनील नारायण को और फास्ट बॉलर्स को इन्होंने यूज किया तो मैच ही अपने आप में अपने हाथ में ले सकते हैं। बट अभी देखते हैं क्या होता है,
1: क्या होता है। देखिए प्लेयर जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, उनका फॉर्म और उस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैटर करती है। क्या पता ये अपने पूरे फॉर्म में हो लेकिन जो उन्हें उनकी बॉल झेल रहा है वो और ज्यादा फॉर्म में हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, शायद वो एकदम टॉप फॉर्म में होगा, ये थोड़े अच्छे फॉर्म में होगा, तो वो तो हो सकता है। मगर मेरा प्रेडिक्शन क्या था, ये शायद ये मैच जो है बैंगलोर जीतेगी।
1: सुदेव के मुंह से ये सुनने में थोड़ा और मजा आता है। आप लोगों को क्या लगता है?
0: लास्ट टाइम जब मैंने बोला था बैंगलोर जीतेगी, बैंगलोर हार गई थी।
1: ये ना ये स्ट्रैटेजी है, देखिए इनकी गलत स्ट्रैटेजी अपना रहे। देखिए फेयर गेम खेलिए अच्छे से, हम भी चेन्नई की तारीफ करते हैं ना,
0: तो मैं भी बोलता रहूं कि अच्छा अच्छा खेला है, अच्छा खेला है, टीम है अच्छी। मैंने कहा मना किया, मैंने कभी कुछ मना नहीं किया।
1: फिंगर्स क्रॉस अच्छा गेम खेलते रहे और ऐसे ही टेबल के टॉप पे जो है हम सबकी फेवरेट जो टीम है वो बनी रहे। आपको क्या लगता है कौन जो है अब जीतने वाला है? 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, आइए जल्दी से बता दीजिए। बाकी गाना कौन सा सुना रहे यार स्लेवर?
0: सपनों से भरे ना,
1: चेन्नई की आंखों में भरे हुए सपने।
0: अरे कौन बात कर रहा है सपनों के बारे में? अब देखो बैंगलोर वालों से तो ये बोलने की जरूरत है नहीं मुझे। एक्सक्यूजेस तो सुनेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल यहाँ पे शंकर एहसान लॉय की आवाज में लकी बाई चांस मूवी का गाना है। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: हो गया ना यार, अब क्या
1: मतलब
0: चंतक राह तो देखिए बन जाएगी।
1: देखिए हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 8:47 हो रहे हैं अभी स्टूडियो क्लॉक में, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
0: और मैं हूं आपकी कशिश पिछले 15 मिनट से
1: जी।
0: सुदेव नॉन स्टॉप हंस रहे हैं और जब से ये गाना चालू हुआ है तब से इनकी हंसी का और ठिकाना नहीं है। क्यों आप इतनी नफरत करते हो मेरी खुशी से?
1: मैं आपकी खुशी से बिल्कुल नफरत नहीं करता, एक्चुअली मैं कुछ और सोच के हंस रहा था मगर आपने अब मुझे याद दिला दिया कि मुझे किस पे हंसना चाहिए था। बट एनीवे यहाँ पे भाई एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, स्कैम
0: फेक ऐप
1: और फोन की चोरी। गूगल ने एक साथ निकाला तीनों का इलाज। वो ये न्यूज चैनल नहीं आता एकदम
0: न्यूज, मुझे तो वो टेली शॉपिंग चैनल जो होते थे ना, बोलते थे कि इसमें आप अपना फोन भी रख सकते हैं, इसमें आप अपने पानी की बोतल भी रख सकते हैं, इसमें सब एक ऑब्जेक्ट एक जो है चीज और तीन इसके इलाज होंगे।
1: जी जी जी जी, अभी के अभी खरीदिए, आप देखिए स्क्रीन पे फोन नंबर ऑफर ऑफर सीमित है बस 15 सालों के लिए, जल्दी खरीदिए जल्दी करके अभी के अभी स्टॉक खत्म हो गए।
0: इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी। हाँ। मैं ना स्कूल से आकर
1: जी
0: कुछ चैनल ऐसे लगा देती थी तो उसमें बीच में ही आ जाता था। एंड उसके बाद मैं अभी जब रिसेंटली जो है कुछ टीवी देख रही थी, सेम टू सेम,
1: ओके
0: मतलब प्रोडक्ट सेम नहीं है,
1: अच्छा
0: लोग भी सेम है, सेम टू सेम उन्होंने शो उठाया और डाल दिया, मतलब कुछ लाइव नहीं है।
1: तो मतलब हमारे साथ दगाबाजी हो रही थी,
0: हमारे साथ स्कैम हो रहा था, हमें जो है फ्रॉड हो रहा था हमारे साथ। लेकिन देखिए इस स्कैम और फ्रॉड से तो आपको खुद बचना पड़ेगा, लेकिन गूगल ने आपको स्कैम और फ्रॉड से बचाने के लिए जो है कुछ ऐसे फीचर्स जो है वो अपने अंदर ऐसे डाल दिए हैं,
1: जी जी
0: सिस्टम में डाल दिए हैं कि आपको बचाया जा सकता है। अब देखिए हर चीज के लिए एक अलग ऐप जो है वो हमें रखना पड़ता था, चाहे वो हमारी डिवाइस की का लोकेशन जो है वो हमें ढूंढना हो या हमें स्कैम से जो है बचना हो, कॉलर से बचना हो, बट अब सब कुछ जो है गूगल की मदद से एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा।
1: एक्चुअली गूगल ने बताया कि गूगल अभी बहुत सारे बैंक्स के साथ मिलकर भी काम कर रहा है एंटी स्पूफिंग मेथोडोलॉजीज को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, स्पूफिंग प्रोटेक्शन जो है और इम्प्रूव करने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी हमें पता चल रहा है कि साइबर थग्स स्कैम कॉल्स इन सब से भी प्रोटेक्ट करने के लिए गूगल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, नए फीचर्स जो है लेकर आ रहा है। अच्छी बात है। देखिए मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगती है सच बताऊँ तो, कि यार स्पेशली जब इन स्कैमों में वो लोग फंसते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मतलब अपने पूरी जिंदगी की कमाई रखी थी,
0: जो है वो जमा करके रखी जमा
1: और वो हाँ, और लोग उसे मतलब स्कैम करके ले जाते हैं। और मुझे ना कई बार एक स्टेटमेंट से बहुत चिढ़ मचती है, बट ये सत्य है, ये इस दुनिया का संसार का सत्य है। कहते हैं कि अच्छा नहीं होना होता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत भोले हो, ठीक है तुम्हारे साथ बुरा होगा। भाई भोला होना तो इंसान का नेचर है होना है, दुनिया बुरी है, दुनिया को सुधारो, तुम इंसान को बुरा क्यों बना रहे हो?
0: नहीं नहीं, तुम्हें थोड़ा तो चालू होना पड़ेगा, थोड़ा चलाक होना पड़ेगा, दुनिया इतने अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यू टू काइंड फॉर दिस वर्ल्ड,
1: व्हाई
0: दिस वर्ल्ड इज नॉट काइंड फॉर मी?
1: एग्जैक्टली दैट इज द क्वेश्चन, ये हर किसी
0: माय काइंड ऑफ वर्ल्ड,
1: ये सवाल पूछो यार, ये सवाल पूछा करो कि वर्ल्ड इतना क्रूएल क्यों है, क्यों है, क्यों है ये? देखिए पूरे इंसानियत की बुनियाद जो है वो इस सवाल पे है कि क्यों है ये? ये सवाल सिर्फ मैंने ही नहीं, हमने ही नहीं, करोड़ों सालों पहले जो उस टाइम पे लोग थे उन्होंने भी पूछा। आप आसपास जो भी इनोवेशन देख रहे हो उन सबका जो एक अगर हम रूट देखें तो वो एक सवाल से शुरू हुआ कि क्यों,
0: क्यों,
1: एक क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ। और जब इंसान क्यूरियस होगा वो जज कम करेगा, जब वो जज कम करेगा तो काइंड ज्यादा बनेगा। एक काइंड वर्ल्ड की आशा की ओर बढ़ते हुए हम अगला गाना प्ले करते हैं। क्या कमाल है दिलजीत की आवाज में।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।
1: स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
0: जी बिंदास।

0: बिंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है थोड़ी ही देर में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो है ज्वाइन करेगी। एक्चुअली वो हमारे ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी।
1: yes.
0: तो मैंने बोला कि करो मीटिंग करिए मीटिंग खेलिए मीटिंग मगर मीटिंग खत्म करके स्टूडियो में जरूर आना है, ऐसी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे सोचा मैंने। एक स्पेशल गेस्ट है तो कौन है वो किस बारे में हम बात करेंगे वो सब तो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी शेयर करना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो इंडिया में हैं या फिर दुनिया में कहीं पे भी है उनको रेडियो ऑलिव के ऐप के बारे में बता सकते हैं।
1: yes.
0: वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से, गुफ्तगू कर सकते हैं हमारे साथ। तो जानी जो मजा आप ले रहे हैं आप क्यों उस मजे से उनको वंचित कर रहे हैं,
1: रख रहे हैं बिल्कुल।
0: क्या बात कर दी महरूम।
1: मैं रुकी हुई थी वर्ड बोलने के लिए।
0: ये महरूम सुन के मुझे एक गाने की लिरिक्स याद आ गई।

0: खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है,
1: मेरे तो सामने वाले माइक पे रहता है।
2: हाय हाय हाय, कौन है कौन है?
1: वन एंड ओनली तनीषा। सुदेव के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सुदेव तो मेरा सूरज है।
2: क्या बात करती,
1: सुबह होती है इनके साथ मेरी।
2: चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनके। खुद की तारीफ सुनके वैसे इंसान को मजा
1: अच्छा
2: जरूर
1: तो लगता है। बस अच्छा ऐसी अगर आप मेरी भी कभी कर दें,
2: बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं यार। देखिए
1: अभी नीचे इंस्टेंटली मैंने बोलने के बाद करेंगे तो बहुत फेक लगेगी।
2: फेक नहीं, एक्चुअली अच्छी वाली मैं एक तारीफ जो है करना चाहूंगा। कशिश के नाम का मतलब है अट्रैक्शन।
1: यस,
2: ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि कशिश के नाम में, कशिश के आवाज में भी एक कशिश है।
1: हाय हाय।
2: कशिश के पर्सनालिटी में कशिश है।
1: यस।
2: कशिश के क्या कहते हैं,
1: हो गया। अब अच्छा, अच्छा फील हो गया है। हो गया, अब बाकी का कल,
2: बाकी का कल
1: एक साथ सारा अभी नहीं।
2: कल तो वीकेंड भी आ रहा है, तो फिर कल तो डोज ज्यादा ही होगा। अभी फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोनू निगम की आवाज में सुनते हैं तुम पे ही प्यार आ गया गाना। आज का दिन हमने प्यार के नोट पे शुरू किया था, तो तुम पे ही प्यार आ चुका है। गिन्नी विद सनी 2 का गाना है। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: I am Aarti Agarwal and I am working as a manager in MBG Corporate Services as a consultant and in the GRC. Basically, I am chartered accountant by profession, so governance, risk and compliance is my expertise.
1: Aarti ji, welcome to Bindaas Mornings. Kya haal hai aapke?
0: बहुत अच्छे और यहाँ आके और अच्छे हो गए. आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.
1: अरे थैंक यू, ऐसे ऐसे मत बोलिए. थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए कि बहुत शॉर्ट नोटिस में आप मान गए गुफ्तगू करने के लिए.
0: दिस वाज रियली वेरी मैं क्या बोलूँ, मतलब समथिंग व्हिच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एक्चुअली टुडे एंड या थैंक यू सो मच.
1: जी वही, हमारे ऑफिस में आते तो एक्सपेक्ट कुछ करना नहीं होता, एकदम से चीजें हो जाती है, यू नो.
0: थैंक यू.
1: चलो तो आरती जी मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं, इंडिया में कहाँ से हैं आप?
0: मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर. या सो माय नेटिव प्लेस इज़ राजस्थान एंड आई एम मैरिड टू ए बॉय हुज फैमिली इज़ इन जयपुर. बट बेसिकली माय ओन फैमिली इज़ लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर. सो माय इनिशियल स्टडीज़ फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ आई हैड डन फ्रॉम द जम्मू.
1: ओके, तो जम्मू में पली बड़ी हैं आप.
0: yes.
1: राजस्थान की हैं और अभी कतर में काम कर रही हैं.
0: yes.
1: तो आपने कभी सोचा था कि सुदेव से बात करेंगे?
0: कभी नहीं सोचा था. और आज भी ये कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए आए एंड आई एंडेड अप हियर, सो दिस इज रियली एक्साइटिंग.
1: जी जी, ये यही हमारा तरीका होता है. हम कभी भी लोगों को प्रिपेयर करने नहीं देते, एकदम से इसे झपट लेते हैं. तो आरती जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पैसों की बहुत मालूमात होगी आपको कि पैसे कैसे बनाने हैं, बनाए हुए पैसे कैसे और बढ़ाने हैं.
0: पैसे कैसे बनाने हैं और उन पैसों से एक्चुअली अच्छी और खुशी वाली
1: जिंदगी
0: कैसे जीनी है. सो इवन अगर पैसा नहीं भी है तो भी खुश कैसे रहना चाहिए.
1: क्या बात कर रहे हैं.
0: मेरे को लगता है कि हर इंसान को सीखना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि पैसा एट द एंड इज नॉट द अल्टीमेट thing which gives the real happiness to you. It's something else totally. So
1: जी.
0: might be coming from a background of finance and business family.
1: And पैसों की कमी तो बचपन से ही नहीं थी.
0: पैसों की कमी तो बचपन से ही नहीं थी. इसीलिए शायद ये जाना लाइफ के अंदर कि पैसा सब कुछ नहीं है.
1: इसी खुशी में आप एक काम कर दीजिए, जायदाद कर दीजिए मेरे नाम और खुश हो जाइए.
0: जायदाद नहीं है इसीलिए.
1: चलो बढ़िया. बट मैं एक सीरियस सवाल जो है पूछना चाहूंगा आपसे, इंपॉर्टेंट बातें जो है गानों के उस पार करेंगे. फिलहाल यहाँ पे गाने वेट कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलवेज 106.3 FM. मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव. जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे आरती है मेरे साथ। आरती के साथ हम बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं और थोड़ी देर पहले हमने आरती का इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि आरती जो है इंडिया से है, राजस्थान से है, एक बिजनेस फैमिली से आती है और CA है यहाँ पे। तो आरती, सवाल की ओर चलते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है जब एक स्टार्टअप आता है या फिर कुछ लोग नया कुछ शुरू करते हैं, बहुत जोश जोश में ना बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे कर लेते हैं। तो ये अननेसेसरी खर्चे कहाँ पे नहीं करने चाहिए और क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सुदेव, क्योंकि बहुत अननेसेसरी समटाइम्स हमको लगता है कि शायद ये खर्चा करने से या फिर है ना एक फैंसी ऑफिस रेंट पे लेने से या फैंसी फर्नीचर लगाने से कुछ हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी उन सबसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एज आई सेड कि आपका एग्जीक्यूशन और आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जो आपका बिजनेस है उसका आइडिया इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए पिचिंग फॉर दैट, तो पीपल शुड यू नो फील द कॉन्फिडेंस इन योर आइडिया एंड हायरिंग मोर पीपल। दीज ऑल थिंग्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द एक्सपेंसेस बिकॉज इनिशियल लेवल पे हमको ही सब कुछ करना पड़ता है, एज ए ऑनर ही सब कुछ करना पड़ता है। उसको अपना उसको ही HR भी बनना पड़ता है, उसको ही एडमिन भी बनना पड़ता है, उसको ही प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ता है।
0: हम ही हैं सब, तो सब हम ही हैं है।
1: स्टार्टअप में द एंटरप्रेन्योर शुड हैव दैट माइंडसेट जहां पे हम
0: तो जैसे जैसे स्केल करेंगे फिर आप रोल्स में लोगों को रख सकते हैं।
1: यस एग्जैक्टली, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता है कि हाँ आपका स्टाफ ज्यादा बढ़ रहा है तो HR की जरूरत है, आपके ऑर्डर्स ज्यादा आने लग गए तो आपको प्रोक्योरमेंट की जरूरत है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द हायरिंग पीपल बिकॉज दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, दैट्स हाउ वी गिव जॉब्स टू द पीपल, बट जस्ट
0: सो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि हम अननेसेसरी चीजें अवॉइड करें। हाँ। अगर वो फर्नीचर हो, ऑफिस स्पेस हो या फिर लोग हो, तो जो काम के लोग हैं उनको आप रखो। ओके, और एक और सलाह, आखिरी सलाह आप जो बताना चाहेंगे बिजनेस ओनर को, मैं भी जरा लिख ही लेता हूँ, कल को बिजनेस शुरू कर दिया तो फिर कुछ एक सलाह।
1: बिल्कुल, एक सलाह जो है बिजनेस ओनर्स के लिए, वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, स्टार्ट विद द माइंडसेट दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ फुल्ली टू द बिजनेस। थोड़े दो तीन साल के लिए भूल जाओ आपकी कोई सोशल लाइफ है, कुछ सालों के लिए भूल जाओ आपकी कोई फैमिली लाइफ है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ फुल्ली टू दैट बिजनेस। अंटिल अनलेस आपका कोई उस बिजनेस में गॉडफादर है या आपका कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसमें आप बहुत सारे पैसे डाल रहे हो या आप बहुत ही वेल्दी फैमिली से आ रहे हो, यू कैन टेक ए रिस्क ऑफ लूजिंग दैट मनी, दैट्स ए कम्प्लीटली सेपरेट थिंग एट ऑल। बट फॉर ए पर्सन goal is to do some business with the limited finance, with the limited resource, तो उसको ये चीज हमेशा mind में रखनी होगी कि he has to throw himself fully into that.
0: थैंक यू सो मच आरती हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सुदेव, दिस वाज रियली वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी,
0: प्लेजर प्लेजर
1: सिटिंग हियर टॉकिंग विद यू एंड गिविंग एडवाइस और माइट बी विद व्हाटएवर लिटिल नॉलेज आई हैड।
0: अरे अरे अरे अरे,
1: दिस वाज रियली अनप्रिपेयर्ड एंड आई जस्ट स्पोक व्हाटएवर हैड कम इनटू माय माइंड,
0: सो
1: दैट इज वेरी I'm very thankful to you for this opportunity.
0: Pleasure, pleasure is all mine. जैसे कि मैंने बोला, बहुत अच्छा लगा कि आप आए, आपने बात की यहाँ पे, thank you so much. और फिर से मिलेंगे, फिर से बातचीत करेंगे।
1: बिल्कुल, I will look forward now. क्योंकि
0: अब मैं prepared आऊँगी।
1: अब मैं prepared आऊँगी, yes.
0: अब मैं सीख कर आऊँगी।
1: With more fancy words.
0: चलो, thank you so much.
1: Thank you so much.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
8: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio.

आप मुस्कान को दीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं जाते जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो कीजिए। आप हमारे कॉन्टेंट चेकआउट कर सकते हैं, फीडबैक्स वहां भेज सकते हैं और हमें यहाँ पे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। आप हमारे शो के फीडबैक बता सकते हैं, आपको कैसा लगा शो सुन के, क्या हम और कर सकते हैं, कैसे कैसे कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकते हैं, आप अपने फीडबैक ज़रूर हमें दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा ऐप है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं जो इंडिया में है या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, ताकि वो भी इस एक जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके। तो यही बात याद दिलाते हुए हम भी ज़रा टाटा बाय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
2: होम्स आर अस। वी कंप्लीट योर होम।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, जहाँ हम लाइफ को थोड़ा सा स्लो फील करके फील करते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ ना बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वन मोड में चली गई है. फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिप्लाइज, फास्ट करियर. लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या हम इमोशनली भी उतने ही हैप्पी हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंगली टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस तो बढ़ गया है, लेकिन पेशेंस बहुत कम हो गया है लाइफ में. अब 5 सेकंड वीडियो बफर हो जाए तो ऐसा इरिटेशन होने लगता है, ऐसा लगता है

मैं पूरा टाइम बस फोन में देखते रहते हैं, एडिटिंग, पिक्चर्स लेना, वीडियोस बनाना. सो आई विल से कि आज के दिन थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जीतने के चार रास्ते, पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो।

0: सो आज के बच्चे सिर्फ टैबलेट्स और स्क्रीन नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी सीख रहे हैं भाई। यहाँ पर मतलब सिर्फ इन कतर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। भाई कतर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने समर इन्वायरमेंटल क्लब 2026 के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं और ये जो इनिशिएटिव है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 11 से 17 साल के ग्रुप के एज के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली उनको सस्टेनेबिलिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मरीन कंजर्वेशन और स्मार्ट सिटीज जैसे टॉपिक्स जो है उन पे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना सिखाएंगे। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है कि बोरिंग क्लासरूम प्रोजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर होंगे वर्कशॉप्स, फील्ड विजिट्स और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, सब कुछ इसी के अंदर है। और लास्ट एडिशन में यूनेस्को पार्टनरशिप भी थी, सो पार्टिसिपेंट्स जो है उनको इंटरनेशनली जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है और नॉलेज तो मिलती ही है। मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अब हॉबी नहीं फ्यूचर स्किल बन रहा है और ऑनेस्टली यंगर जनरेशन का एनवायरमेंट के लिए अवेयर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस उन्हें ही फेस करने हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि कतर ग्रेजुअली सस्टेनेबिलिटी बेस्ड एजुकेशन पे काफ़ी फोकस कर रहा है, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें। ये सब टर्म्स अब स्कूल लेवल डिस्कशन में भी आ रहे हैं और बच्चों को नेचर से कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। सो आजकल बचपन जो है वो मोस्टली इंडोर्स ही हो गया है क्योंकि यू नो कतर में बहुत लंबे टाइम के लिए 6 महीने के लिए गर्मी रहती है तो बच्चों को अंदर रखा जाता है। बट येस, हमारे पास अभी भी इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए स्विमिंग पूल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, खेलने के लिए बहुत सारी जगह है, बच्चों के लिए पार्क्स हैं। सो आई विल से कि कतर जो है वो बहुत ही अच्छी यू नो स्पीड में आगे बढ़ रहा है एंड आई विल से कि अगर आप भी अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं देन गो फॉर इट, आई रियली लाइक इट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है लाइफ मस्त है, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

यार ईद का एक्साइटमेंट जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है कतर में. हर कोई यू नो अपनी शॉपिंग करने में, अपने नए नए कपड़े बनवाना या फिर अपनी तैयारियां करना, घर को सजाना, इन सब चीज़ों में ऑलरेडी यू नो लोगों ने अपना जो टाइम है वो निकालना स्टार्ट कर दिया है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि 27 तारीख को ईद हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है. और ऑनेस्टली मून साइटिंग का साइंस काफ़ी फैसिनेटिंग होता है. So I will say कि मून के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मंथ्स डिसाइड होते हैं. और इसी बार मैं अगर कहूँ, एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया था कि जो क्रीसेंट मून होता है वो सैटरडे सनसेट के वक्त विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मून टेक्निकली उस वक्त होता ही नहीं है. सो साइंस और बाकी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना काफ़ी ब्यूटिफुल लगता है. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो चल ही रहा है, पर आपको अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए. सो चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो लाइट्स हो, फैमिली गैदरिंग हो, फूड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट हॉलीडेज. सो ऑफिस ग्रुप चैट सडनली ना एक्टिव हो जाती है, कितनी छुट्टी मिल रही है, कहाँ पर कौन जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग तो घर जाने का भी प्लान कर रहे होंगे. सो आई एम श्योर अगर आपने भी अभी तक अपनी छुट्टी प्लान नहीं की है तो आप प्लान कर लोगे फटाफट से. पर अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो फिर शॉपिंग, फैमिली गैदरिंग्स, फूड, इन सब की तैयारी तो करनी पड़ेगी. सो 3311063 इज माय नंबर. आप बताओ कि आपने अपनी तैयारी कब शुरू की और कितनी पूरी हो चुकी है. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल

0: So, आज की जो किताब है थोड़ी सी रोमांटिक है, थोड़ी सी इमोशनल है और यूनिक तो है ही. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और द बुक नेम इज द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ.
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: So, 2003 की ये बेस्ट सेलिंग नॉवल जो है वो दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई. और इसका रीज़न बहुत सिंपल था कि ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, टाइमिंग की स्टोरी है. बुक का मेन कैरेक्टर जो है वो टाइम ट्रैवल करता है, कभी फ्यूचर और कभी पास्ट, और उसकी रिलेशनशिप इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है. और सच बात यह है कि बुक का इमोशनल इम्पैक्ट ना काफ़ी डीप है, क्योंकि ये बार बार रैपिडली एक क्वेश्चन पूछता है कि लव सर्वाइव कर सकता है जब टाइम ही स्टेबल ना हो. अब आप सोचो, इतना बड़ा सवाल है और इतनी सिंपल सी भाषा में पूछा गया है. मतलब इंटरेस्टिंगली बुक साइंस फिक्शन फील नहीं देती, इट फील्स इमोशनल एंड ह्यूमन. और इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है आपको पता है? बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स, वेटिंग, मिसिंग समवन, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स. और कभी कभी शायद लव स्टोरीज ना फैंटेसी में भी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि आपको लगता है कि ये ना बेस्ट है. सो सोचो इतना इंपॉर्टेंट सवाल कि लव सर्वाइव कर सकता है जब टाइम स्टेबल ना हो. भाई जहाँ पर टाइम स्टेबल है, हम जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस लोगों के आसपास रहते हैं, वहाँ पर हमें ये सवाल का जवाब नहीं मिलता. लेकिन जब साइंस फिक्शन में ये सवाल पूछा जाए तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो यू शुड रीड दिस बुक. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

So, क्या लगता है आपको आज कोहली जो है वो कितने रन बनाएंगे या फिर भुवनेश्वर कुमार जो है वो कितने विकेट चटकाएंगे? You are listening Radio All of 106.3 FM. This is me, Muskan with you. और शो का नाम है Life Must है. So, बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता का मैच आज होने वाला है शाम को, जिसके सारे अपडेट्स तो आपको मिल जाएंगे यहीं सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. पर मैं सोच रही हूँ पहले इसकी बात कर लेते हैं. और कल मैच था गुजरात वर्सेस हैदराबाद. मतलब गुजरात और हैदराबाद के मैच में अगर आप डिफरेंस

0: सो यस्टरडे वॉज हैदराबाद वर्सेज गुजरात और मतलब एक का स्कोर अपने टीम में सबसे ज्यादा था और एक का स्कोर अपने टीम में सबसे कम. यस मतलब गुजरात की अगर मैं बात करूं तो इट वॉज जस्ट 86 रन और पूरी टीम ऑल आउट. मतलब हिस्ट्री में जो पूरा टूर्नामेंट है उसकी हिस्ट्री में हैदराबाद का सबसे कम स्कोर था ये. इससे पहले टीम का सबसे छोटा टोटल जो था वो 2019 में मुंबई के सामने था 96 रन का. भाई वो भी कम करके इन्होंने 86 रन बनाए कल. पूरी टीम ने दूसरा सबसे कम ऑल आउट स्कोर जिसे कहते हैं वो है. और इससे पहले 2022 में लखनऊ जो है वो 82 भी बना चुकी है. अब आप सोचिए कि जिसका रिकॉर्ड 86-82 का रहा हो उससे आप 86 भी उम्मीद कर ही सकते हैं. बाय द वे आज के मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज है बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता. सो कोहली होंगे और सामने भुवनेश्वर कुमार होंगे. दोनों ही टीम के जो कैप्टन हैं बड़े अच्छे हैं, साथ ही साथ दोनों ही ऐसा लगता है कि अच्छा खेलते हैं. सो आज पता चलेगा कि भाई शाम को क्या होगा दोनों टीम के बीच में. अभी तक 35 मैचेस हुए हैं, बेंगलुरु ने 15 और कोलकाता ने 20 मैचेस जीते. पिछले सीजन में दोनों के बीच में खेला गया जो मैच था वो बेंगलुरु ने जीता था और इस सीजन में दोनों टीम्स पहली बार आमने सामने आ रही है. मतलब बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता अभी तक कभी हुआ नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में. सो वी विल सी कि आज शाम को क्या होता है. बाय द वे हु इज योर फेवरेट टीम बताओ मुझे 3311063 पर. मुस्कान है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: इमेजिन कीजिए कि सीधे दोहा से ट्रेन पकड़ के आप गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो. साउंड फ्यूचरिस्टिक राइट? लेकिन जीसीसी रेलवे प्रोजेक्ट एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. तो बेसिकली प्रोजेक्ट अभी जो है ऑफिशियली 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है. 1700+ किलोमीटर्स का ये मेगा रेल नेटवर्क गल्फ कंट्रीज को कनेक्ट करेगा और एक्सपेक्टेड ऑपरेशन टारगेट है 2030. इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि पैसेंजर्स और जो ट्रेन्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीड प्लान है. मतलब हर चीज़ पहले से ही देखी जा रही है. टूरिज्म, ट्रेड, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग सब इम्प्रूव होगा. और ऑनेस्टली रेलवे कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं होती, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हैं. यूरोप का एग्जाम्पल आप देख लीजिए. ट्रेन कल्चर ने कंट्रीज को और ज़्यादा यू नो क्लोजर ला दिया है. और जीसीसी रेलवे भी सिमिलर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. प्लस एनवायरमेंटल एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फ्यूचर का जो ट्रांसपोर्ट है वो और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. पर अभी थोड़ा सा टाइम है. इट्स 2026 बट 2030 में इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है. सो वी कैन एक्सपीरियंस इजीली. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to
1: से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जगह

0: सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोहा मेट्रो, जो कि धीरे से सिटी लाइफ को और भी ज्यादा इजियर बना रहा है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है। सो दोहा मेट्रो एंड लुसेल ट्रैम ने न्यू मेट्रो लिंक रूट को अनाउंस किया, विच इज M307 एंड M308, जो स्पोर्ट्स सिटी और अल सुदान स्टेशन को कनेक्ट करेगा। और ऑनेस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कन्वीनियंस जो है वो धीरे धीरे काफी इंप्रूव हो रहा है। पहले लोग मोस्टली कार्स पे डिपेंड थे, अब मेट्रो कल्चर जो है वो इतना लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है कि मतलब हम मेट्रो के बिना रह ही नहीं सकते। और दोहा मेट्रो का एक्सपीरियंस तो कितना ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्लीन स्टेशन, स्मार्ट सिस्टम, पंचुअल टाइमिंग, और कभी कभी लगता है कि एयरपोर्ट टर्मिनल में ट्रैवल कर रहे हो आप, मतलब इतना पंचुअल है सब कुछ। और स्मार्ट मोबिलिटी फ्यूचर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सिटीज जो ग्रो होने के साथ साथ ट्रैफिक भी नेचुरली जो है इंक्रीज होता है, इसीलिए मेट्रो, ट्रैम्स और इन सब का यूज किया जाता है। एंड आई फील कि भाई कितने बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप स्पेशली मेट्रो से जाते हो, सो दैट आपको अगर पार्किंग नहीं भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यू कैन एंजॉय योर इवेंट बिना किसी टेंशन के। सो आई विल से कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेट्रो यूज करो तो याद रखना दिस इज लाइक बेस्ट थिंग इन दोहा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: भाई आज एक फन टॉपिक जो है वो ग्लोबल रैंकिंग इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है, विच इज टॉप कंट्रीज नोन फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। भाई मतलब जैसे ही वुमेन की बात आती है मैं एकदम ऐसे, मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे पढ़ना है। और इंटरेस्टिंगली टर्की जो है वो रैंक्ड नंबर 1 है इसमें और इंडिया is on number 6. You are listening Radio All Over 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। लेकिन honestly, beauty ranking always, you know, subjective होते हैं क्योंकि हर कंट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। फॉर example, टर्किश ब्यूटी जो है वो हमेशा शार्प फीचर्स और कॉन्फिडेंस से एसोसिएट होती है, और इंडियन ब्यूटी जो है वो डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। और इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, मतलब डिफरेंट ब्यूटी इन डिफरेंट रीजन्स। मतलब अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको डिफरेंट ब्यूटी फील होगी, पंजाब जाओगे तो आपको अलग तरह की ब्यूटी मिलेगी, केरला इज टोटली डिफरेंट, कश्मीर इज टोटली डिफरेंट। सो आई विल से कि सभी फीचर्स ना कंप्लीटली यूनिक होते हैं, और सोशल मीडिया पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल बना दिया है, बट विच इज नॉट राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबॉडी इज यूनिक, और फैशन इंस्पिरेशन हर कंट्री से यू नो हमें लेना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉन्फिडेंस स्टिल जो है वो बिगेस्ट फैक्टर माना जाता है। स्टाइल या मेकअप अटेंशन ले सकता है, पर पर्सनालिटी का कनेक्शन जो है वो कॉन्फिडेंस से ही आता है। By the way, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? You are listening Radio Olive, number है 3311063. मैं हूँ मुस्कान, stay tuned, जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। Awesome.

कांस 2026 से जो सबसे ज्यादा यू नो पिक्चर्स मेरे सामने आ रहे हैं वो है आलिया भट्ट के लुक्स। इस बार आलिया फुल ग्लोबल फैशन आइकॉन मोड में दिख रही हैं। सबसे पहले उनका यू नो एयरपोर्ट लुक वायरल हुआ, ऑल ब्लैक लग्जरी आउटफिट, फिर स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर और मिनिमल स्टाइलिंग, और फैशन पेजेस ने उसे धीरे से लग्जरी एनर्जी बोला। और फिर आया एक लाउड फैशन, क्लीन एलिगेंट पावर ड्रेसिंग, फिर कान से उनका ड्रीमी मिंट ग्रीन गाउन लुक आया जो लिटरली प्रिंसेस वाइब दे रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे सिंड्रेला बनने के लिए कोई बोले तो मैं यही गाउन पहनूंगी। फिर उसके बाद वो हैंड पेंटेड फ्लोरल डिटेलिंग जिसमें इतना सॉफ्ट मेकअप, स्लीक बन, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, और पूरा लुक फ्रेंच यू नो एस्थेटिक जैसे ही लग रहा था। उसके बाद ओपनिंग नाइट पर आलिया ने पीच कलर का एक ब्यूटिफुल गाउन पहना था लास्ट नाइट, जो कस्टम मेड कुटोर था बाय तमारा राल्फ, जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल था। और सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं, ग्लोबल फैशन यू नो अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है तो वो आलिया भट्ट है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और जब भी कांस की बात आती है या मेट गाला की बात आती है तो मुझे लगता है भाई थोड़ा सा डिटेल में बात करना जरूरी है। लग्जरी कैसी होनी चाहिए, क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए, और इंडियन ग्लोबल फ्यूजन कैसे यू नो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आलिया हमेशा उसमें ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। व्हाट अबाउट यू, मतलब आपको क्या लगता है कि रेड कार्पेट मोस्टली वेस्टर्न गाउन्स को डोमिनेट करते हैं या फिर साड़ी भी इंस्पायर्ड हो सकता है, हैंडक्राफ्टेड एम्ब्रॉयडरीज हो सकती है, इंडियन डिजाइनर्स हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: मेरे को यहाँ पे इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि जिस किताब के बारे में आज मैं बात कर रही थी वो किताब उन लोगों ने पढ़ रखी है एंड सच अ ब्यूटीफुल बुक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो भाई आज का लास्ट थॉट ये है, वैसे तो मेरे जाने का टाइम हो गया है, कि लाइफ का ना बिग जो मोमेंट होता है पूरे दिन का वो कोई अचीवमेंट नहीं होता, वो टाइम होता है जब आप अपने घर पहुंचते हो, शूज़ उतारते हो, फ़ोन को साइड में रखते हो और आपको लगता है कि यार आज का काम मैंने अच्छे से ख़त्म कर दिया है. बस वही एक सबसे सुकून भरा टाइम होता है. सो आई विल से कि जिस किताब की आज मैं बात कर रही थी, द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा. और इस किताब का सबसे अच्छी जो बात यह है कि एक सवाल पूछती है आपसे कि यार लव सर्वाइव कर सकता है जब टाइम ही स्टेबल ना हो, मतलब जब स्टेबल है सब कुछ. वी आर 2026, राइट? हम किसी साइंस फिक्शन में भी नहीं है, सब कुछ स्टेबल है बट स्टिल हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है. तो आप सोचिए जब टाइम स्टेबल नहीं है तब इस सवाल का जवाब क्या होगा. सो रीड दिस बुक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. अभी के लिए आई हैव टू से बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. कल मिलेंगे सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए स्टे ट्यून, जियो विद अस.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par. And I don't know how many of you could relate to this, lekin kya aap bhi ye karte ho jab koi conversation chal rahi ho, you know, and it is going on a hyper note. To aap khud ko us waqt ya to control kar lete ho ya fir kai baar hame jawab aate nahi hai. Baad mein jab hum akele baith ke uske bare mein soch rahe hote hain and then jawab aate hain aur fir mirror ke samne full conversation aisa dimag mein chal rahi hoti hai hamari, you know, usne ye bola tha main ye jawab de sakti thi, usne ye bola tha to mere paas ye bhi counter tha par maine nahi diya. क्यों? क्योंकि मुझे सिचुएशन को संभालना था. एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग कभी कभी जब वो जवाब नहीं आ रहे होते, क्योंकि गुस्से में जो चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं वो जितना हार्शली और डीप कट करती है ना इंसान को, वो भरना बहुत मुश्किल होता है. सो इट्स बेटर एट टाइम्स कि हम वो दिमाग में रखें, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको सही वक्त पर जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है. सो इन चीज़ों में डिफरेंस, यू नो, यानी दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस पता कर पाना इज द ट्रिकी सिचुएशन. बट धीरे धीरे लाइफ में हम सीख ही जाते हैं वो, है ना. मैं भी सीख रही हूँ, इसलिए आज एकदम से ख्याल आया इसका, तो मैंने कहा बात करते हैं यार. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, अली जफर और सारा हैदर की आवाज में. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: Radio Honor, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

उदित नारायण साहब और अलीशा चुनाव की आवाज में इश्क विश्क से कौन है वो फिलहाल तो दनीशा है आपके साथ यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ समर एनवायरमेंटल क्लब 2026 यस द प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून 21st से लेकर जुलाई 2nd तक 20 कतरी स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन है बिटवीन एज 11 टिल 17 ईयर्स और ये जो इनिशिएटिव है इट एम्स टू स्प्रेड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी अमंग यूथ व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ एंड इसमें एक्टिविटीज होंगी जैसे कि वर्कशॉप्स अवेयरनेस लेक्चर्स फील्ड विजिट्स सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन सेशंस अलॉन्ग विद दैट जो टॉपिक्स है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी होंगे मरीन कंजर्वेशन के ऊपर होंगे स्मार्ट सिटीज सर्कुलर इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्लाइमेट अवेयरनेस ये सारी चीजें भी इसमें कवर होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर है तो फटाफट से जाइए चेकआउट कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए अगर आपके बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है तो और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हाईलाइट किया है कि भैया अगर आपको क्यू पोस्ट के किसी भी यू नो सर्विस की ट्रैकिंग करनी है तो वो आप मिट्रश ऐप के थ्रू कर सकते हैं. जी हाँ, हमारे फोन में जो मिट्रश ऐप है उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपने कतर पोस्ट से भेजा है कहीं भी. ऑल यू हैव टू डू इज एंटर द पोस्टल ट्रैकिंग नंबर, स्पेसिफाई द मेल डिस्पैच पॉइंट और रिक्वेस्ट डिटेल्स देखने के लिए वहां पर क्लिक कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका स्टेटस अपडेट कि कहां पहुंचा है, कब तक पहुंचेगा, कितनी देर लगेगी, कब तक नहीं आएगा, सब पता चल जाएगा आपको वहां पे. सो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है और सुनते रहिए रेडियो आलेव यू की स्ट्रेस फ्री गाने तो यहां पे भी चल रहे हैं मेरी जान. जियो बिंदास रेडियो.

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par, and it's just a gentle reminder for all of you ki apna khayal rakhein. Garmi bahut ho gayi hai, I know, aur garmi ko bardasht karna mere to bilkul bas ki baat hai hi nahi. And that's what I've been doing, you know. Agar kahin se bhi bahar se aa rahi hu aur thodi si bhi garmi lag rahi hai to fatafat se AC ke niche aake khade ho jana hai, thanda thanda pani pee lena hai. Aur uski saza bhukti maine abhi last 2-3 days. I was very sick, mujhe viral ho gaya tha, and you know, super extreme wala cold ho rakha tha, bolna mushkil ho gaya tha, awaaz nahi nikal rahi thi. So, and it's not fun aise time pe chutti milti hai to, hai na? So sahi salamat rahe, swasth rahe, aur fir chutti enjoy kare to maza bhi aayega. तो प्लीज ख्याल रखें कि कहीं भी धूप से आ रहे हैं तो एकदम से ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना है. एंड बाहर भी आप अगर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी तो कैरी कर चलिए, पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ठीक है? और साथ में बाहर से एकदम से आ रहे हैं और एकदम एसी के नीचे जाके बैठ जाना है, वो सब भी नहीं करना है. गर्म सर्द हो जाता है, ऐसी मेरी मम्मा बोलती थी कि यू नो, गर्मी से आ रहे हो और ठंडा पानी पी लोगे, गर्म सर्द हो जाएगा. दैट मीन्स जो कि समर में सर्दी हो जाती है, जो मुझे हो गया है. सो या, उससे बच के रहना. बहुत परेशान करती है यार, बहुत एक्सट्रीम बॉडी पेन होता है. And you know that coughing is super annoying. So please अपने आप को उससे बचा कर रखें और अपना ख्याल रखें, और जो भी measures ज़रूरी हैं उन्हें लें और enjoy करें अपने time को. और weekend भी आ रहा है जी, तो ठीक रहना तो देखो बनता है, है ना? So take care and सुनते रहिए Radio Olive, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है.

0: Tanisha.
1: जावेद बशीर साहब की आवाज में ये तूने क्या किया, सेम चीज आप मुझे बोलोगे जब मैं आपको आज का वर्ड बताऊंगी, क्योंकि धीरे से रियलाइजेशन हो जाएगा भाई।
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
1: सो वर्ड ऑफ द डे इज लिमिनल, LIMINAL, एंड लिमिनल इज यूज्ड फॉर अ स्पेस, फॉर अ प्लेस यू आर एट। बेसिकली जैसे हमने कुछ चीज़ें प्लान करी है, मैंने प्लान किया है कि मुझे अपनी यू नो फिटनेस जर्नी पे जाना है, पर आज से नहीं हो रहा है, वो कल से करूँगी यार, और वो कल आ ही नहीं रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने रूटीन में ऐड कर दी है, पर जो चीज़ें मुझे सब्सट्रैक्ट करनी चाहिए थी, यू नो हटानी चाहिए थी, रेडिकेट करनी चाहिए थी, वो नहीं करी है। तो वो जो छोटी चीज़ें ऐड करी वो कोई फ़ायदा नहीं दे रही है मुझे मेरी हेल्थ जर्नी में। और मुझे लग रहा है कि यार मैं तो एफर्ट्स डाल रही हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ मुझे शुरू करनी है वो मैंने कल पर छोड़ रखी है, क्योंकि आज से ज़्यादा सेफ कल लगता है ना, और कल कभी आता ही नहीं। तो ये जो आज और कल के बीच में हम फंसे रहते हैं ना, कुछ नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए कि कल करेंगे, दैट प्लेस जहाँ हम अटके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिनल स्पेस। यस, एंड आई नो अ लॉट ऑफ अस आर स्टक देयर, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, और कभी कभी मोटिवेशन होता भी है ना तो एनर्जी नहीं होती, एंथुजियाज्म नहीं होता, और ये सब चीज़ों का मिक्सचर जब एक साथ मिले वो दिन कल ही आता है जो कि हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो यार दैट्स लिमिनल स्पेस फॉर यू, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, मस्त मगन ऑन योर रेडियो, ऑल ऑफ ट्रियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ है आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड वैकी विजडम में आज कुछ कमाल बताने वाली हूँ. सो एज वी से ना कि यार मुझे कोई गाना पसंद आ जाता है तो मैं तो उसे इतना रिपीट पे सुनती हूँ जब तक बोर ना हो जाऊँ. पर हमने सोचा है कभी कि एक लिमिट क्या होती है, वो क्या नंबर है कि इतनी बार सुन लिया उसके बाद ही बोर होंगे. या सो देर इज एक्चुअल नंबर फॉर दैट. 200 इज द लिमिट कि 200 बार जब तक आप एक गाना ना सुन लें तब तक आप उससे बोर नहीं होते. जहां आप 200 के पार गए, 201 पहुंचे कि बोर, फिर लगेगा नहीं भाई साहब अब नहीं हो पा रहा है मुझसे. तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि अभी तक मेरे 200 की लिमिट पार नहीं किए हैं क्योंकि मैं उनसे बोर नहीं हो रही हूँ. एंड उसी तरह से अगला गाना भी है मूव ये इश्क फ्रॉम द मूवी धुरंधर. स्टे ट्यून एंड जुबिन दास. आप बताएं मुझे वैसे कौन सा गाना है जो कि 200 की लिमिट पार कर गया है आपके लिए और आप उससे हो चुके हैं बोर, जो कि एक टाइम पे था आपका सुपर फेवरेट. 3311106 पर.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

यार क्या मस्त गाया अरिजीत सिंह ने, मतलब यू कैन यू नो हियर द स्माइल व्हेन ही सिंगिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, मजा आ जाता है मुझे गाना सुन के। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ, ऑलिव रिचार्ज चल रहा है, और वक्त हो गया है हाँ जी लेम जैम्स का, वक्त हो गया। आज का मेरा सवाल लेम जैम्स का थोड़ा ट्रिकी है, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि एक कमरे में 200 लोग आए और 200 गए, तो अब कमरे में कितने लोग बचे, बताएं मुझे। सो एक कमरे में 200 लोग आए और 200 गए, तो कितने लोग बचे कमरे में, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी, द नंबर ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट इन द रूम, ये बताना है। 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर। एक कमरे में 200 लोग आए और 200 गए, तो कितने लोग बचे, बताएं फटाफट से। फिलहाल एंजॉय करते हैं पति पत्नी और वो दो से गुरु रंधावा और हीर की आवाज में रूप दी रानी। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। जी बिंदास मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

क्या सुंदर गाना है यार ये। जावेद अली साहब ने जो चार चांद लगाए इतने प्यार से इसे गा के, मतलब मुझे तो ना ये टेलीपोर्ट कर देता किसी ऐसी दुनिया में जहाँ पे कुछ बुरा है ही नहीं, सब बहुत अच्छा, हैप्पी हैप्पी, बढ़िया है एकदम। क्या आपको भी ये फील होता है? होता है, मैंने मान लिया है। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Trisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहे हैं अब। So, Lame Jams का मैंने सवाल पूछा था कि एक कमरे में 200 लोग आए और 200 गए तो कितने लोग बचे। यहाँ पे मुझे कुछ जवाब आए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान साहब बोल रहे हैं, तनिषा मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा है, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं, आप लोगों से मोहब्बत है यार, आपके कॉल का हम इंतजार करते हैं, आपको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो। मे बी कुछ यू नो लाइन्स वगैरह बिजी होंगी और ऐसे कुछ सीन हुआ होगा, बट कोई भी ब्लॉक नहीं है यहाँ से भाई। और कुछ लोगों ने मुझे सही आंसर दे दिया है पर कुछ 46, ये कैसे निकल के आया? क्या आपने मैथमेटिक्स इसमें लगाया है, कौन से फॉर्मूलाज लगाए हैं कि 46 आंसर निकल गया है? सम पीपल आर सेइंग 198 व्हिच इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन द करेक्ट आंसर, थोड़ा इंतजार करो, एक और मौका देते हैं, लेट्स सी इफ दे आर एबल टू फिगर इट आउट और नॉट। एक कमरे में 200 लोग गए और 200 लोग आए और 200 गए तो कितने लोग बचे? 3311 1063 पर फटाफट से मैसेज कीजिए और बताइए। फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
1: इन एसोसिएशन विद
5: होमस्टार अस, वी कंप्लीट योर होम.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी. कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम. ड्रीम बिगर.

0: तनिषा
1: तनिषा। अब देखो वो तो मैं क्या ही बताऊं, व्हाई डज इट हैपन इन लव, अब हो रहा है तो चिल करो, इट शैल आल्सो पास, यू नो। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है। यहां पर आर लेम जैम्स का सवाल पूछा था मैंने। So the question was कि अगर एक कमरे में 200 लोग आए और 200 गए तो कितने बचे? So पहले जो 198 और 46 वाले थे वो तो eliminate हो गए, ठीक है। उसके बाद आए हैं मुझे और भी जवाब और बहुत सारे answers आए हैं आज तो, and एक answer stood out to me, so I think अब्राज जी का था वो। He said कि 200 लोग आए और 200 गए तो एक बचा। कैसे बचाइए आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अब्राज जी, मैं जानना चाहूँगी ये तो आपकी ट्रिक आपने क्या लगाई है इसमें। बाकी मुझे आंसर्स आए हैं सहमत के एंड डैन्यूब के, डैन्यूब ग्रुप से, एंड देन देर इज इरफान, देर इज रोहन, देर इज फुरकान, शहबाज एंड कुछ अजीब सा नाम है ये, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मतलब कुछ वियर्ड से लेटर्स हैं। सो उनका एंड सलेफ, दिनेश, मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज है, शहजाद का मैसेज है, एंड यस द करेक्ट आंसर इज 200 बिकॉज दे कुड क्रैक इट, यू नो। 200 लोग आए और 200 गए। मैंने कहा था यू नीड टू यू नो लिसन बिटवीन द लाइन्स, 200 गए दैट मीन्स 2 वर स्लीपिंग, बट स्टिल रूम में तो 200 ही बचे ना। यस सर, कांग्रेचुलेशंस, आप और मेरा आपका जो लिमनेस लेवल है वो फुल ऑन मैच कर रहा है। नाउ व्हाट मिस्टेक आई डिड व्हाइल आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माय कॉलीग्स लाइक सुदेव और कशिश को मैंने पकड़ा कि आओ जरा मेरे लेम जैम्स का सवाल का जवाब दो आज, और मैंने उनसे सवाल ही ऐसे पूछा कि कमरे में 200 लोग गए और 200 गए। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि ये कैसा सवाल है, ये क्या पूछ रही हूँ मैं, और सुदेव ने जवाब दे दिया सही सही, तो फिर मैंने वीडियो बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यस बट आपको, आप डिजर्व करते हैं एक बढ़िया गाना मेरी तरफ से, श्रेया घोषाल और मीका की आवाज में, हिम्मत वाला मूवी से फील्स, ओहो ताकी ताकी ओनली ऑन रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

0: तनिषा
1: इश्क चांदी भी है, इश्क सोना भी है, इश्क बड़ा महंगा भी है. सही जा रहा है एकदम. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. तनिषा आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का, मेरी जान. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे वीकेंड. यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. सेलिब्रेट करेंगे साथ में मिलके, फुल ऐसे जोश के साथ एंटर करेंगे वीकेंड में. तब तक आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, समझे? हाँ, और पानी वानी साथ रखा कीजिए क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है. स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान. और जो जो मैंने चीज़ें बताई थी ना, जिसका मैं नतीजा भुगत रही हूँ, कि ऐसे धूप से निकल के आ रहे हो और फिर एसी के नीचे खड़े हो रहे हो या फिर ठंडा पानी पी रहे हो, डोंट डू दैट. ओके, अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेहत है तो सब है यार. और बाकी कोई भी बात हो जहन में शेयर करना चाहते हैं तो 3311106 इज द नंबर. बिंदास आके शेयर कीजिए, नहीं तो radioolive.qa इज द हैंडल फॉर आर सोशल मीडिया. वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैसेजेस कर सकते हैं. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.
2: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.
3: Yeah, Ghana.

0: Your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे, आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन।

इस गाने को सुन के एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, चाहे दर्दीला गाना, लेकिन इस गाने में जो मतलब जिस तरीके से ज्योति नूरा ने इस गाने को गाया है, भाई साहब बवाल। इसके सारे लिरिक्स आते हैं, मुझे चेयर पे बैठे बैठे फुल लॉन में फील ले रही थी। गाना बंद कर देती तो जो मेरी बेसुरी आवाज थी वो मुझे खुद ही सुनाई दे देती, इसलिए मैंने गाने की आवाज एकदम ऊंची रखी ताकि मुझे फीलिंग ना आए, बट फीलिंग आ रही थी यार गाने को सुनते हुए। मेघा जी सोनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आओ के साथ जबरदस्त इनिंग शुरू हो चुका है। फीलिंग लेने के लिए तैयार हो जाओ, 4 घंटे अब नहीं है, अटेंशन मुझे पूरी चाहिए।

शुक्रिया मेहरबानी करम से मुझे एक चीज आती है, कुछ लोग ना अपनी लाइफ में इतने ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि उनके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे वो इतना ज्यादा थैंक यू शुक्रिया बोलते हैं। आई रिमेम्बर मेरी मम्मा ऐसी थी कि मेरी मम्मा हर और उनके लिए आपने ना एक छोटा सा चॉकलेट दे दिया, उनको एक गिलास पानी का दे दिया, वो 10 बार थैंक यू बोलती थी यार आपको। नकम्मे थे हम कि कभी करते ही नहीं थे, वो बाद में चीजें जो है वो आपको याद आती है। लेकिन मेरा भी है कि अगर मेरे लिए कुछ छोटी सी भी चीज कोई यू नो मेरे लिए कर दे तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और थैंक यू आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। और आज जो है वो मेरे साथ शो पे कोई और भी सुनाई देने वाला है 7 से लेके 8 बजे के बीच में, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अपने पहले पूरे दिन के बारे में बताओ, कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311106 आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं। सैयारा का ये गाना तुम हो तो, ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ डार्लिंग। काउंटडाउन स्टार्ट करें, बहुत दिन से नहीं किया यार। चलो फिर 4 3 2 1 एंड गो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hello to all the listeners of Radio Olive.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: वाइब सेट कर दी है यार इस गाने ने। वैसे वाइब तो जबरदस्त इवनिंग्स के शुरू होते ही सिमरन कौर की याद आ जाती है यार। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, आप लोग कर लो, उसका इंतजार मैं नहीं करूंगी। ऐसी बात नहीं, आप लोगों से भी बहुत प्यार और बहुत सारी तारीफ जो है मिलती है। 5:21:45 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुका है। आज का मैच जो है वो बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में होना है, लेकिन होगा कब होगा वो मुझे नहीं पता है। रायपुर में 57th मैच खेला जा रहा है, क्योंकि वहां पे बारिश की वजह से जो फील्ड है वो अभी मतलब वेट है, तो उसकी वजह से बारिश शुरू नहीं, मतलब बारिश मतलब शुरू हुई थी तो मैच शुरू नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही मैच शुरू होगा मैं आपको उसकी सारी अपडेट्स दे दूंगी। एंड इन बिटवीन अगर आप ये बताना चाहें कि आप कोलकाता को सपोर्ट कर रहे हैं, बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मैच होगा कि नहीं होगा, वो भी आप बता सकते हो 3311063 पर। सिमरन कौर याव के साथ मैं ही गैजी जियो विनार।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Vakra VFS Global ke side, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive. Jio Bindaas. Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Offer valid hai 31st May tak. Experience more with Ooredoo.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Supported by Homes R Us. We complete.

रॉक द डांस फ्लोर करना है, पंजाबियों को नचवा लो, डांस फ्लोर हिल जाएगा। स्टूडियो की घड़ी पे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए एक नंबर गाने

सो वेदर के बारे में बात करते हैं। आजकल ना मतलब मैं अपनी दीदी को कॉल करूं या अपने भाई को कॉल करूं, उस मेरा भाई जो है साइप्रस में, मैं उसको कॉल करूं तेरे यहाँ पे कितना टेम्परेचर, दीदी को कॉल करूं आए तुम आपके यहाँ पे दुबई में कितना टेम्परेचर है, आजकल तो वो खैर नेपाल है तो मैं पूछती हूँ नेपाल में कितना टेम्परेचर है, उनका ठंडा ठंडा तो माहौल जो है वो वहाँ पे सही चल रहा है। तो एक दूसरे के टेम्परेचर की बात करते करते जो है वो ये आ जाता है कि अरे यार तुम्हारे यहाँ पे इतना है, हमारे यहाँ पे इतना, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। आई रिमेम्बर नाउ मेरी मम्मा जो थी वो इस तरह से बात करती होती थी, है ना, कि तोड़े उत्थे कितना टेम्परेचर, हम बोलते थे कोई और बात नहीं आती है कि स्लोली स्लोली वी ऑल आर टर्निंग इन टू आर पेरेंट्स यार।

अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस ही है. विंड 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है. ह्यूमिडिटी 25 है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज 42 था एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है आज का 30 डिग्री होने वाला है. वेलकम समर जी, क्या हाल है आपके? मैं नहीं बात कर रही आपसे. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us, we complete your home.

हरी इश्क है यार, ये गाना सुन के मैं सर्दियों वाली फील ले लेती हूँ। जब मैं गई थी ना इंडिया में, ये गाना मैंने सुना पता कब, जब इंडिया में मैं अपनी फैमिली के साथ पहाड़ वाले एरिया में गई थी, जिसको जहाँ पे है खजियार, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं एंड बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे पता है कि बादल नीचे आए हुए थे, मेरी जो खिड़की थी जो मेरे रूम की, एकदम सब कुछ ऐसे दिख रहा है, मुझे पहाड़ दिख रहे हैं। और तनीषा बीच में खांसी कर रही है, अपनी खांसी साइड में रखो तनीषा जी, दवाई टाइम पे खाया करो, ओके। अगर आपको खांसी सुनाई दी थी तो इग्नोर कर लो, ओके। हाँ, तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े एंड बादल नीचे आए, बड़े बारिश हो रही है, तब ये गाना मैंने स्पीकर पे जोर से बजाया था। तब से जब भी ये गाना चलता है ना मजा आता है ना। एक चीज मैंने नोटिस की थी, वहां पे जो भी कैब्स वगैरह आपको घुमाते हैं ना लोकल, ये गाना जरूर चलता है वहां पे। सो एक मेमोरी उनके साथ जुड़ गई है। और जो भी मेमोरीज हमारी रहती है इंस्टाग्राम पे हम डालते रहते हैं, जो कि 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है स्टोरीज, लेकिन रिसेंट मैंने एक चेंज देखा है, जो कि मुझे अब चेंज नहीं मिला है, लेकिन हमारे रेडियो ऑलिव की स्टोरी में ये चेंज मैं देख रही हूं, जिसमें क्या होता है ना कि लाइंस होती है स्टोरी की 1-2-3 वाली ऊपर वाली है ना, वो लाइंस अभी नीचे दिखने लगी है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ये चेंज, लेकिन क्या आपके इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी का चेंज आपने देखा है, स्टोरी देखने वाला, बताइएगा मुझे 3311063 पर। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

Radio Olive, your happiness frequency. गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके लिए एक नंबर गाने जो है वो चला रही हूँ, लेकिन एक नंबर मैच जो है वो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि बेंगलुरु ने टॉस जो है वो विन किया है, अभी मैं देख रही हूँ, और थोड़ी देर में जब मैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और कोलकाता को सपोर्ट कर रहे हो या फिर बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहे हो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ भी अगर बताना चाहते हैं, अगर आपका बर्थडे है या फिर आपकी एनिवर्सरी है, कुछ शेयर करना चाहते हो मैसेज, तो डेफिनेटली कर सकते हो। 3311106

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: मेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। टाइटल ट्रैक एंजॉय कर रहे हैं आप जबरदस्त इवनिंग्स में। मैं कह रही सुने कितना दिखी हलचल। यार शाम को ये गाना और भी अच्छा लगता है उसके साथ साथ। ये तेरा मेरा मिलना। चलो जी जेंजी डिकोडेड में आज क्या वर्ड को डिकोड करने वाले हैं हम? जेंजी डेटिंग टर्म में एक वर्ड आता है लव बॉम्बिंग। सो लव बॉम्बिंग का मतलब है कि जब आप किसी में बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हो, एक्सेसिव प्यार बरसाते हो उनको सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए। सो या इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। कूल वर्ड है यार काफी। 6:21 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान है जो कि आपको भारी भरपूर प्यार दे रहा है जस्ट टू मैनिपुलेट यू, तो भाई लव बॉम्बिंग हो रही है आपके साथ। सुधर जाओ, संभल जाओ। सिमरन कौर आपके साथ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
1: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालुकास जोयालुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

आपका कौन सा गाना सुनना है?

लगा कि तुम जो आई जिंदगी की वाट लग गई। हम लोग ना जब ऑफिस में बैठे होते हैं ना तो ऐसे गाने की बैंड जो है ना वो बहुत ज्यादा बजाते हैं, अपने तरीके से गाने जो है वो हम बोलते हैं, लेकिन एक फन होता है यार ये सारी चीजें करने में, कौन कितना क्रिएटिव जो है वो हो सकता है। नॉर्मली हमारे ऑफिस को देखे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार तुम्हारे ऑफिस का माहौल जो है ना वो बड़ा चिल है, तो जितना चिल इंसान रहता है ना ऑफिस में अपनी वर्क प्लेस पे उतना ही ज्यादा वो क्रिएटिव जो है वो हो पाता है। हम लोगों को लिटरली एक दूसरे को बोलना पड़ता है अरे अपना ये जो है ना क्या कहते हैं फोन पे वॉल्यूम बंद कर ले, खत्म कर ले, रील्स देखनी, क्रिएटिव चीजें करना, मीटिंग्स करना, ये जो माहौल रहता है ना उसमें आपको एक क्या होता है ना कि एक वो मिलता है कि यार जिसमें आप जो है वो काम कर पाए जो करना चाह रहे हैं, है ना। बंद के इंसान जो है ना वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो पाता है। सो यार 6:33 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, मैच शुरू हो चुका है, मैच की अपडेट में आपको वापस लौट के देती हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
4: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
3: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
4: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ Zabardast evening. Make your drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: ओए होए होए, व्हाट अ ट्रैक यार। आप अपनी बातें सेट रखो यार, अभी फिलहाल बहुत सारी बातें जो है वो अगले घंटे होने वाली है। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो है जिनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, उनके साथ मैं बात करने वाली हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ट्रस्ट मी। एंड आज का मैच जो है वो क्या कह रहा है डार्लिंग, मैच जो है वो डेफिनेटली शुरू हो चुका है। एंड आज का मैच जो है वो कोलकाता एंड बेंगलुरु के बीच में जो है वो चल रहा है। कोलकाता ने 7 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 64 और 2 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन सी को सपोर्ट कर रहे हो।
1: हाय सिमरन,
0: हेलो,
1: गुड टू हियर यू ऑलवेज,
0: थैंक यू।
1: अच्छा आपने पूछा किसको सपोर्ट कर रहे हो, यार हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सपोर्टर हैं दिल से मुंबई के। मुंबई चली गई बाहर, किसे सपोर्ट करें अभी, कोई बचा ही नहीं है।
0: दोस्त कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना दुखी मत साउंड किया करो, सिमरन कौर का शो सुन रहे हो यार, मुस्कुराना बनता है, पॉजिटिव रहो यार लाइफ में। और किस तरह से हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहा जाता है ये अगले घंटे जो है वो आपको जानने के लिए मिलेगा। एंड आर यू, बस थोड़ी देर में सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कौर, कहते रहिए जियो बिंदास।
2: Radio Olive Bar. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: خوشرايك صح.
1: هنجي مانجلي سوريو كده تجي الجا अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मेरे स्टूडियो में आज कोई होने वाला है। हाय, मेरा नाम है फजल और मैं कतर में रहता हूँ। रेडियो वाले में आपका स्वागत है फजल।
2: थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, और बहुत मजा आ रहा है रेडियो पे।
1: मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। जब मेरे स्टूडियो में कोई एंटर करता है ना गेस्ट, उसके चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल और पॉजिटिव एनर्जी होती है, वाइब सेट हो जाती है। और आज ये वाइब सेट होने वाली है फजल के साथ। जानेंगे इनकी स्ट्रगल के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि अब इनको फजल के नाम से कम और मोमो वाला के नाम से ज्यादा जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अभी आप हमें सुन रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके एक बार मोमो वाला या फजल व्लॉग्स जो है वो जाके चेक कर लीजिएगा। सो ये जर्नी जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई फजल?
2: ये जर्नी 2019 मार्च में स्टार्ट हुई। मैं यहाँ पे आया तो किसी और काम के लिए था, लेकिन कुछ और हो गया। बट यस, स्टार्ट किया, बढ़िया चला। उसके बाद तो यार 6 महीने काम ही किया, उसके बाद फिर कोविड आ गया। फिर कोविड
1: एक नया स्ट्रगल।
2: यानी अभी जस्ट आया हूँ, फिर ये आ गया, फिर वो जैसे तैसे पास किया, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर कभी रेस्टोरेंट में काम किया, कभी बेकरी में काम किया। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे डाला, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। देन फिर एक दिन ये डायलॉग बोला कि मेरा नाम फैजल है और मैं कतर में रहता हूँ, वहां से रीच बहुत बढ़ने लगी। तब मैं समझ गया कि भाई ये काम कर रहा है मेरे लिए।
1: आपका एक मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट था कि आप आपकी जो यूएसपी थी वो है हिंदी बोलना।
2: एग्जैक्टली लोग उसको, और मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो में नहीं बोलता, तो वॉइस ओवर में मैं दिल की बात डाल पाता हूँ अपने। हाँ। कि मैं लोगों को कैसे बता रहा हूँ कि भाई यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो लोगों ने पसंद करने लगा। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, लोग मिलते हैं।
1: ओके, सो मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि फैजल जो थे वो मोमो वाला बने, उन्होंने आपको इस चीज से मोटिवेशन मिलेगा, मोमो वाला ने अपने सैलरी की शुरुआत कहाँ से की थी?
2: यार मेरी सैलरी की शुरुआत 1200 थी।
1: तो अगर आप अपनी लाइफ में अभी ये सोच रहे हो कि यार लाइफ खत्म हो गई है, कुछ नहीं चल रहा है या कुछ नहीं होगा, सो लेट मी टेल यू, यहाँ से शुरुआत हुई थी इनकी। और आज देखो ये कहाँ पे। इनकी जर्नी के बारे में और भी बात करेंगे बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: में ना चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, बहुत कम लोग होते हैं जो गिव अप नहीं करते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आपके साथ और मेरे साथ है फजल AKA मोमो वाला। लेकिन मोमो वाला बनने की जर्नी जो थी वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी, बट गिव अप नहीं किया। तो ये मोमो वाला का आइडिया कैसे आया और सिर्फ मोमो ही क्यों, बताओ फैजल।
1: यार मोमो तो मेरे बचपन से मैं खाते हुए आ रहा हूँ। दिल्ली में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फेमस और शाम के टाइम में लोग खाते हैं वो मोमोस ही है। और मैंने बचपन में खाया, स्कूल टाइम में खाया, कॉलेज टाइम में खाया, बट जब कतर में मैं आया ना, मेरे को कतर में वैसे मोमोज मिले ही नहीं, वो दिल्ली वाले स्पाइसी ग्रेवी वाले। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मेरे को आइडिया तो था सारा कि गवर्नमेंट के पेपर वगैरह कैसे होते हैं, मैंने वो किया। और उसके बाद फिर छोटी सी दुकान ली और अपने 5-6 जो बेस्ट सेलिंग होते हैं दिल्ली वाले उससे स्टार्ट किया। मुझे सारी रेसिपीज वगैरह पता ही थी, मैंने चलो स्टार्ट करते, एक दो स्टाफ को हायर किया मैंने। और लकीली मुझे शॉप भी ऐसी मिली बिल्कुल मंसूरा की, बिल्कुल कोने में छोटी सी शॉप, मजेदार बहुत,
0: जो कि शुरुआत के लिए अच्छी थी।
1: शुरुआत के लिए बहुत अच्छी थी, रेंट कम था, स्टाफ की सैलरी बहुत कम थी। और वहीं पे पास में एक मार्केट है सुखरज, वहां से हर एक चीज को मैंने इकट्ठा किया, सस्ती गेट, पुरानी लाइट सब कुछ ला के फटाफट सेट किया और स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो लोगों को पसंद आया वो सच में।
0: तो हर दिन वैसे आपके लिए एक चैलेंज भी होता होगा, क्योंकि जो क्रिएटिव बंदा होता है फूड के साथ भी क्रिएटिविटी होती है, जैसे आप रील के साथ भी क्रिएटिविटी करते हो, सेम पैटर्न जो है वही वो नहीं फॉलो करते हैं। सो हर दिन फूड के साथ भी एक्सपेरिमेंट आपका चालू रहता है, यार ये चीज नहीं लॉन्च करते हैं, वो चीज नहीं, वो एक दिमाग में रहता है।
1: एग्जैक्टली हाँ, ये हमेशा रहता है। और क्या कहते हैं, मैं अभी खुद हमेशा सोचता रहता हूँ कि अब लोगों को मैं क्या दूँ, अब लोगों को मैं, जैसे भी जैसे ही हम लोगों ने बड़े, मैंने बड़ा अपना मोमो वाला बनाया तो फिर मैंने वहाँ पे पानी पूरी दिल्ली वाली ऐड करी, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा कि नहीं यार सच में ये कुछ दे रहा है।
0: हाँ, नाइस। वापस लौट के और भी इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। फैजल और सिमरन है आज जबरदस्त इवनिंग्स में, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete your

0: जब भी आप एक फेज से गुजर रहे होते हो ना, जहां पे आपके लिए स्ट्रगल होती है, आप उन सब लोगों को याद रखते हो जिन्होंने आपका साथ दिया या फिर नहीं दिया। आप तो आपके साथ थे ही, तो वो कौन से लोग थे जिनको आप थैंक यू बोलना चाहोगे, स्पेशली अब आपके पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे दिल्ली में, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे?
1: यार जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ना, जब हम लोग वीडियो बनाने के लिए निकलते थे, तो मेरे एक दोस्त होता था नवीन, वो उत्तराखंड से, वो उस बंदे को ना पता नहीं मेरे पे कितना बिलीव था, ठीक है, वो बोलता था नहीं फैजल भाई करेंगे, आप फोड़ दोगे, कर लोगे। तो उसके टाइम में हम 2020 में निकलते थे वीडियो बनाने के लिए, वो मेरे साथ होता था बेचारा, मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता था और अपने खर्चे पे लेके जाता था हर जगह। उस बंदे ने मेरे ऊपर बहुत खर्च किया, मेरे को बनाने में उस बंदे ने बहुत साथ दिया है, ठीक है।
0: हाय नवीन, मैं बीच में से आपको काट रही हूँ, थैंक यू सो मच।
1: और उसके बाद जब ये सारा पॉइंट आया, तो मेरी फ्रेंड है प्रियंका, उसके साथ मैंने वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट की, और उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद जब मैं आइडिया के साथ आया, तो मैंने ये आइडिया अपने एक दोस्त को पिच किया जिसका नाम अभिषेक है, वो मेरा भी पार्टनर है।
0: हाय अभिषेक।
1: यस। और एंड यू नो, जब मैं उससे मिला ना, फर्स्ट टाइम मैं उससे मिला और मैंने उससे 6 से 7 घंटे बात की, वो इतना इंटरेस्टिंग बातें करता है, एंड ही इज वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर। यस,
0: तो बुलाना पड़ेगा अभिषेक, आपको भी बुला रहे हैं अभी नेक्स्ट।
1: मैं उसकी रील्स दिखाऊंगा आपको, उसकी वॉइस आपको सुनाऊंगा, सच में आप फैन हो जाओगे।
0: ठीक है।
1: तो जब उसने मेरे को बुलाया भी ना, मैंने जब उसको बताया मोमो वाला के आइडिया में, उसने बस मेरे को ये बोला कि मुझे रात भर का टाइम दे दे, मैं बताता हूँ। लिटरली सिमरन, उसने मेरे से रात में बात करी है, सुबह बंदा मेरे सामने खड़ा है कि लेट्स गो ब्रो, लेट्स डू इट। और हम लोग ने फटाक से वो शॉप ली, और पिछले यानी 1 से 1.5 महीना हम लोग के पास वो ई व्हीकल होती थी ना, वो जो बैटरी वाली आती है, उस पे हम दोनों बैठते थे, मार्केट जाते थे। उस बंदे ने भी मेरे साथ उतने स्ट्रगल किया जितना मैंने किया है, भाई से भी बढ़कर जो है ना, उसने यानी बोला कि नहीं मैं साथ दूंगा तेरा, उस बंदे ने बना दिया।
0: क्या बात है, समय रैना के पास बलराज है और अपने फजल के साथ जो है वो अभिषेक है। ऐसे दोस्त लाइफ में होना बहुत जरूरी है, एंड जब आप कतर में होना, जब आप घर से दूर हो, तो दोस्त आपकी फैमिली होते हैं यार। आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, अपने दोस्तों के बारे में बता सकते हैं 3311063 पर। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. गाड़ी के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: वेल, बहुत मजा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि एक आध बिजनेस मैं भी शुरू कर ही लूँ यार। छोटी थी ना तो मैं क्या सोचती थी, मैं सोचती थी कि मैंने ना खोलना है ढाबा। ढाबे में दो ही चीजें होंगी, एक होगा परोठा और एक होगी चाय। और छुट्टी वाले दिन, जो संडे वाला दिन, इंडिया में तो संडे था है ना, संडे वाले दिन चना पूरी हलवा होने वाला है, पूरा दिन चलेगा। सो ऐसे मेरे थॉट्स थे। मुझे चाय शुरू से बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं बोलती थी चाय की दुकान खोलूंगी। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आपका शौक अलग चीज होती है और वो जो एक पागलपन होता है काम शुरू करने का, वो अलग होता है, जो कि आपने प्रूव किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, जो कि जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। लेकिन अब बिजनेस करने के बाद उसकी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए जब आप रेडियो ऑलिव में आए हैं, तो सिमरन के शो में आए हैं, जो कैसा लग रहा है?
1: नहीं, सिमरन से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, क्योंकि जब मैं 2019 में खाली होता था ना, और अपने फ्रेशअप एक कैफे शॉप था वहाँ पे, वहाँ पे मैं काम कर रहा होता, तो दिन में कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग, अब उसमें कुछ एक्सेस था ही नहीं ना, हम लोग को फोन अलाउड था, तो क्या करें, हम लोग फटाक से एफएम लगाते थे। उस टाइम में रेडियो ऑलिव आता था। अब आप लोग सवाल जवाब इतने पूछते हो, तो हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होके छुपके से आप लोगों को मैसेज करते थे कंपनी के फोन से कि ये आंसर है, ये आंसर है, तो बहुत मजा आता था उस टाइम में सुनने में। ऐसे ही हम लोग के शाम के 5 बज जाते थे, हमारा टाइम पास हो जाता था।
0: स्वीट। अभी आपके पेरेंट्स आपको दिल्ली में सुन रहे होंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे?
1: यार, आई लव यू गाइस।
0: लड़के एक्सप्रेस नहीं कर पाते यार।
1: नहीं, मम्मी पापा ने जो हमारे लिए किया है ना, सच में
0: है ना,
1: हम लोग बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, बट मम्मी पापा बहुत प्राउड करते हैं मेरे पे।
0: स्वीट। yes. और पूरा कतर प्राउड कर रहा है यार आप पे।
1: सच में। और यहाँ के लोग, कतर के लोग तो सच में अच्छे हैं।
0: अरे मैं आपको बता दूं, फजल की आंखों में ना आंसू आ गए हैं, आपको टिश्यू दे देती हूँ यार, ऐसी कोई भाव। माई गॉड यार, ये होता है जब आप ना एक ऐसे लेवल से निकल के आते हो ना, जहाँ पे आपने जो चीजें देखी नहीं है, और आपने अपने अपने दम पे वो चीजें की हैं, तो भाई उसका मजा ही अलग होता है। अरे यार, तो नदियां बह गई, आंसू आ गए, बट गुड। सच्चा इंसान होता है ना, रोता है। और मैं कहती हूँ, रोना बहुत अंडररेटेड है, हम सबको रोना चाहिए। और लड़के तो रोते ही नहीं है, अच्छी बात है, आप रो रहे हो निकल जाता है, फिर बाल नहीं झड़ते, पता उससे।
1: नहीं, मैं आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाहता था कि ये मैं बोलूं, मैं किसी के साथ शेयर करूं, और मैं चाहूं कि लोग, मैं इतना बड़ा भी इंसान नहीं हूं कि लोग मेरी वजह से इन्फ्लुएंस हो, बट मैं सच बताता हूं कि अगर आप लोग किसी भी चीज को बहुत शिद्दत से करना चाहते हो, तो जरूर होगी, बस हिम्मत मत हारना, और ये मत सोचना कि नहीं आज का दिन बेकार है तो कल का दिन बुरा होगा, कल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, खुदा सब कर देता है।
0: क्या बात है यार। चलो फिर इसी खुशी में आप रेडियो ऑलिव में, बताओ कौन सा गाना तुम्हारे लिए प्ले करूं?
1: यार, मेरा और मेरे दोस्त का एक फेवरेट गाना है, हम सुनते हैं हमेशा गाड़ी में, चोरी चोरी चुपके।
0: अच्छा, वो लकी नो टाइम फॉर लव, सलमान खान वाला। ठीक है जी, वो थोड़ी देर में प्ले होगा, एंड आई एम श्योर आपको फैजल की जो जर्नी है, AKA मोमो वाला की जो जर्नी है, उसने इंस्पायर किया हो। बहुत जल्दी ये रील जो है, हम भी इंटरव्यू जो है वो अपलोड करने वाले हैं हमारे रेडियो ऑलिव पर, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में, जहाँ पे हमने बात की, रेडियो में उतना डिटेल में नहीं कर सकते हैं, टाइम ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे जाता है। सो या, अभी मैं आपको नीचे छोड़ने जाती हूँ, एंड
1: थैंक यू,
0: होपफुली फिर से जरूर मुलाकात होगी। एंड यस अभिषेक, हम आपका गाना सुनने के लिए तैयार है, किसी दिन मैं शाम को अपने शो में बुलाती हूँ, गिटार बजा लेते हैं कि नहीं बजा लेते?
1: सब पूरा बैंड है उसके,
0: गिटार लेके आना, तो फिर अपन किसी दिन महफिल जो है वो जमाते हैं। अभी के लिए जो महफिल जमी, आई होप आप सबको पसंद आया हो, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi Radio Olive.
3: Radio Olive.
2: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan. I'm in number one.
4: Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes R Us. We complete your

याद तो देखो सबका रहता है, यही सबकी दिक्कत है कि सब याद रहता है यार, जो भूलना चाहते हैं वही याद रहता है। जी मैं जी सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। जब भी मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ तो मेरे अंदर वो जाग जाता है, थैंक यू सो मच सेम टू सेम।

0: अभी फिलहाल मैच में क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ. कोलकाता और बेंगलुरु का मैच जो है वो चल रहा है, एंड पहले तो बारिश की वजह से मैच जो था ये लेट स्टार्ट हुआ और कोलकाता ने अपनी पारी खेली और 193 रन का टारगेट दिया. अभी बेंगलुरु खेल रही है और 3.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 45. पहला विकेट जा चुका है. 97 बॉल्स पे 148 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए.
1: T20 Score update presented by
2: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Cool song.
2: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
4: Cool song.

जी मैं जी सुने कितना की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। थैंक यू सो मच यार सुनने के लिए फिर से मेरे दिमाग में थैंक यू सो मच। अच्छा जी ऐसा है क्या प्लीज यार फॉरगिव मी यार मेरे 24 घंटे यही दिमाग में चलती रहती है लड़की। देखो ना कितना ज्यादा पॉपुलर हो गई और बढ़िया है यार सब खुश रहे लाइफ में। अभी आपको खुश करने का टाइम आ गया। नेम गेम में मैं क्विकली आप सबके नाम जो है वो लेने वाली हूँ। बस आपको मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा दोस्त। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बताती हूँ और उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के भेजिएगा। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। 3311063 एक बार प्यार से 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजो। चलो फटाफट से आप लोग सबके नाम लेने वाली हूँ। आलम सुल्तान गुजर डेजी इमती कृतिका राबिया मोहम्मद आमिर राहुल यूसुफ बिलाल जय सुनील चौहान फैजल रमनप्रीत सईद थैंक यू सो मच। और यार फिर से सिमरन कौर तूने थैंक यू सो मच नहीं बोलना है। जाकिर जी थैंक यू सो मच। ओह गॉड प्रीतिका एंड मोहम्मद जी सुनील जी मिया सजाद जी गुरनाश जी गुरांश सॉरी गुजर साहब थैंक यू सो मच। मत हंसो आप लोग हंस लो मेरे थैंक यू सो मच पे। वहाब शहजाद दिनेश सफीफ फुरकान अब्रार रोहन इरफान अबू सईद बसंत थैंक यू सो मच। देखो आप कितने गंदे हो यार आप मुझे थैंक यू सो मच लिख के भेज रहे हो मज़े ले लो आप मेरे। के पी सुमन उदीन अगर देखो मैं थैंक यू सो मच नहीं ना बोलती तो मैं करती हूँ तो भाई उससे मज़ा नहीं आ रहा मुझे। ओके एंड सूरज थैंक यू सो मच दैट्स इट फॉर नाउ। मिस्टर खान आबिद उर रहमान सुमन उद्दीन दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप लिखो थैंक यू सो मच मत लिख रहा प्लीज। और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो बना के भेज दो जो कि आप हमेशा यूज करते हो चैट के टाइम पे।

0: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: लेकिन जाने से पहले एक बार मैं स्कोर अपडेट जो है वो आपको दे देती हूँ। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 193 रन का टारगेट दिया है। बेंगलुरु अभी खेल रही है 63 बॉल्स पे, उनको 96 रन चाहिए जीतने के लिए। एक विकेट ऑलरेडी जा चुका है। सुया मैं अभी जा रही हूँ अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा। खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।
1: रेडियो और

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सब इम्पोर्टेंस का खेल है ना, मतलब दिन भर हर कोई ऑनलाइन आता है लेकिन तब भी सारे मैसेजेस रीड नहीं कर पाता। जब व्हाट्सएप नया नया आया था ना, तब सबने एक एक मैसेज रीड करने स्टार्ट कर दिए थे। अब अनरीड मैसेज की कैटेगरी अलग है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैसेज है जिसको हम लेट इट बी लिनियंट छोड़ देते हैं और फिर कब जाके पता नहीं वो पढ़े जाते हैं, और कई बार तो पढ़े रहे भी नहीं होते, ऐसे ही व्हाट्सएप डिलीट होकर नए फोन में इंस्टॉल हो जाता है। हाई, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। पर यहां कोई मैसेज अनरीड नहीं रहेगा, आजमा के देख लो। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश और कहां से सुन रहे हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। लंबे सफर पे निकले हो या फिर छोटी सी मुलाकात करने किसी से जा रहे हो, स्माइल करके जाना। याद रखना, सिर्फ वो एक कॉम्प्लीमेंट जो किसी को देते हो वो उसकी शाम बना सकता है। तो आज जब किसी से मिलो ना, तो बस उसको एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देना, शायद उसकी ड्रेस को लेकर या फिर उसके हाथ के बनाए उस खाने को लेकर, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देना जरूर। वैसे अभी मैं जो गाना चला रहा हूँ ये बता देना कैसा लगा। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, साथ में गुनगुना भी लेना। अभी तो फिलहाल इस गाने की वाइब्स को साथ में एंजॉय करते हैं, दिल से गुनगुनाते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वैसे आजकल दोस्ती भी दो टाइप की होती है जनाब, एक जो हर रोज बात करते हैं रात में वो वाले दोस्त, सब कुछ शेयर करते हैं, और एक वो कजन्स वाले दोस्त जिनको मिलने के लिए, मीटअप के लिए जनाब किसी ना किसी को शादी करनी पड़ती है।
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: हे हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिड नाइट लॉन्च के सफर में, और बारी है रील्स वाली रियल कहानी। वैसे सबसे ज्यादा ट्रेंडी कर रही हैं आजकल कजन्स की रील्स, बहुत सारे कजन्स वापस से आजकल एक साथ मिल रहे हैं, वो मीटअप हो रहा है, लेकिन जनाब वो मेंशन कर रहे हैं कैप्शंस कि भाई इंडियन फैमिलीज में ना कजन्स का रीयूनियन तभी पॉसिबल होता है जब घर में किसी ना किसी की शादी हो। एक कजन एंगेजमेंट में मिलता है, दूसरा हल्दी में एंट्री लेता है, और तीसरा बस जनाब बेचारा खाना खाते हुए फोटो अपलोड कर पाता है, और फिर वही क्लासिक लाइन, यार नेक्स्ट मीटअप के लिए ना लगता है अब किसी ना किसी को तो शादी करके अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। नहीं, वैसे आज के शो में भी फुल ऑन मस्ती होने वाली है, आगे आगे क्या क्या रील्स के बारे में बात होने वाली है,

अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉन्फिडेंटली गाने गलत गाए हो? मतलब ये काम मेरे साथ बहुत बार हुआ, उल्टा जिस बेचारे को गाने गाने आते थे ना, वो भी कंफ्यूज हो जाता, भाई ये गलत गा रहा है कि मैं गलत गा रहा हूँ। लेकिन मैं इतनी सुर में और कॉन्फिडेंटली गाता हूँ ना कि कई बार दो ही लाइन में पूरा गाना खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी यू नो लय चेंज होती रहती है।

Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज. Welcome back, दोस्तों. और Midnight Lounge के सफर में चलते हैं फिल्मी flashback की धुनों में. जी हाँ, वही धुन जिनकी बात मैं करने वाला हूँ आपसे. तो आज मैंने सोचा कि एक म्यूजिकल चैलेंज देते हैं. आज मैं आपको एक आइकॉनिक लाइन देता हूँ किसी गाने की और आपको बतानी है कि उसकी नेक्स्ट लाइन क्या हो सकती है. मतलब जरूरी नहीं कि जो लाइन एक्चुअल आपको वही लाइन बोलनी है, आप उसके आगे क्या लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं. तो जनाब गाने की लाइन कुछ इस तरह से है. दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू व्हाट. व्हाट की जगह पे आपको वो लाइन लगानी है क्या चीज. तो आप बताइए नेक्स्ट लाइन क्या होगी. कुछ इंटरेस्टिंग चटपटी होनी चाहिए. वैसे सच बताऊं, 90s और अर्ली 2000s के जो गाने इतने मैजिकल थे ना, एक लाइन सुनते ही पूरा अंतरा ऑटोमेटिकली दिमाग में प्ले होने लग जाता था. लेकिन आज अंतरा आप बनाएंगे. और वैसे एक और चीज बताऊं कि उस वक्त की जो लिरिक्स गूगल पे होते थे ना, मतलब वो ढूंढे ही नहीं पड़ते थे. वो पहले के गाने आज भी ना इंसान को वर्ड टू वर्ड याद रहते हैं. अब के गाने तो फिर भी गूगल करने पड़ते हैं, लिरिक्स निकालने पड़ते हैं. तो अब जल्दी से अपने आंसर भेजिए. इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश. और आपका आगे का अंतरा क्या होगा. अभी तो फिलहाल शो का मुखड़ा ही शुरू हुआ है, तो चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से सफर को म्यूजिकल ट्रैक्स के साथ. जियो बिंदास.

वो लाइन लिटरली मुझे याद आ रही है जनाब, ये सब आंसर्स और रिप्लाई पढ़कर, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं। मतलब मैंने पूछा था एक गाना जिसको आपको पूरा करना है, लोगों ने तो सीधा खाना पीना सब कुछ हटापट सब डाल दिया इस फिल इन द ब्लैंक पर। हाई, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल एफ पर, और बारी है

0: फ्लैशबैक।
1: तो मैंने एक बहुत प्यारे गाने की लाइन आपको दी थी जिसका मुखड़ा सुनाया था, दुनिया मांगे अपनी मुरादे मैं तो मांगू व्हाट। तो भाई दुनिया मांगे अपनी मुरादे, उनकी मुरादे पूरी होती रहेंगी। फिलहाल मेरे पास एहतेशाम जी का मैसेज आया और ये कहते हैं, भाई एक बढ़िया से गोल गप्पे ओए होए होए होए और साथ में दही बल्ले पापड़ी, लजीजदार बढ़िया सी एक चाय बन जाए, उसके साथ साथ क्या लिखा है, मलाई चाप। ओफ क्या बात है यार, इन्होंने तो मतलब मेरे को इंडियन फूड की याद दिला दी। क्या क्या मस्त मस्त डिशेस होती हैं ना अपने यहाँ, इन्होंने तो भाई पूरा कर दिया। दुनिया मांगे अपनी मुरादे मैं तो मांगू दही बल्ले पापड़ी और चाप और ये और वो, ख़त्म ही नहीं हो रही। इंसान कितना स्वार्थी है रे, लालची इंसान। बट कोई इशू नहीं है, लेकिन इन्होंने साथ में एक और ये चीज़ लिखी, एक प्यारा सा गाना। तो चलिए प्यारा सा गाना तो मैं खैर आपको दे सकता हूँ, बाकी डिशेज यार कोई दिक्कत नहीं, घर जाओ पकाओ झटापट खा जाओ और मुझे ज़रूर बताना टेस्ट कैसा लगा। फिलहाल ये गाना कैसा लगा जरूर बताइएगा, इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और जनाब ये गाना आपके लिए भी जी बिंदास।

0: अच्छा आजकल ना लोग फोन के वॉलपेपर्स तो मैनिफेस्टेशन वाले रख लेते हैं, पर खुद पर बिलीव करना कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं,
1: डिजिटल डायरी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिड नाइट लाउंज में, और मैंने पन्ना पलट लिया है डिजिटल डायरी का। दोस्तों आजकल ना सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ट्रेंड कर रही है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग कहते हैं जो सोचो वो अट्रैक्ट होता है, और सच बताऊं कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी भी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देती है। जी, आज इस पन्ने पे यही लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक। हम नोट्स ऐप में गोल लिखते हैं, है ना, वॉलपेपर ड्रीम कार्ड लगा लेते हैं, और लेट नाइट इमेजिनरी इंटरव्यूज भी दे देते हैं। लेकिन असली मैजिक सिर्फ विश करने में नहीं होता है जनाब, बिलीव करने और एफर्ट करने में होता है। क्योंकि यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज देता है, पर उन्हें रियलिटी बनाने के लिए करेज और कंसिस्टेंसी हमें लानी पड़ती है। तो आज की डिजिटल डायरी के हिसाब से जनाब, सोने से पहले अपने फोन में एक नोट लिखिए, मैं जो डिजर्व करता हूं वो मेरी तरफ आ रहा है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी तो फिलहाल एक प्यारा सा गाना आपकी ओर आ रहा है, कहीं जाएगा नहीं। संतरे रेडियो ऑलिव सीओ बिंदास।

स्कूल का एनुअल फंक्शन, एक ऐसी मेमोरी जहां टैलेंट से ज्यादा एक्साइटमेंट परफॉर्म करती है, नहीं? आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। और बारी है दोस्तों आज की कहानी की, वो एनुअल फंक्शन डे वाली परफॉर्मेंस, उससे पहले की कोरियोग्राफी की। याद है वो दिन जब एक गाने पर 25 बच्चे डांस करते थे और सबको लगता था सेंटर पोजीशन बस उनको ही मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस के नाम पर सब लोग को एक्साइटमेंट रहती थी कि एटलीस्ट क्लास से पीछा छूटेगा, जो टीचर पढ़ा रही है उससे पीछा छूटेगा, बोरिंग क्लास को छोड़कर एटलीस्ट डांस क्लास में जाने को मिलेगा और गॉसिप्स का टाइम मिल जाएगा। और जैसे ही टीचर बोलती है स्माइल करो बेटा, बस उसके बाद स्टेप्स भले ही भूल जाओ, स्माइल फुल ऑन रहती थी। और वो बैक स्टेज वाले चाउस यार, किसी का दुपट्टा मिसिंग, किसी का शू टूट गया और कोई लास्ट मोमेंट पे पूछ रहा होता है यार मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था। लेकिन सच बताऊं उस एनुअल फंक्शन में सिर्फ डांस नहीं होता था, वहाँ फ्रेंडशिप बनती थी, क्रश स्टोरीज क्रिएट होती थी और कॉन्फिडेंस भी वहीं से ग्रो होना शुरू होता था। आज भी जब वो ओल्ड स्कूल सॉन्ग सुनाई देते हैं ना, दिल ऑटोमेटिकली स्टेज पर वापस चला जाता है कि नहीं? आपके भी कोई ऐसे किस्से हैं जो आपको वापस से स्कूल के एनुअल डेज की याद दिलाते हैं? उन चाउस को साथ में डिस्कस करते हैं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज है। अभी फिलहाल रिश्तेदारी गहरे करते हुए एक प्यारा सा गाना प्ले करते हुए आपके शाम को दिल से कहते हैं जियो फिंदास।

मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

तेरी निगाहों में तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: वैसे हम फ्यूचर सिक्योर करने में इतने बिजी रहते हैं कि प्रेजेंट को फील करना ही भूल जाते हैं. नहीं, पर यही तो चीज है जिसको हमेशा याद रखना है सोने से पहले.
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप.
0: Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज. Midnight Lounge के सफर में सोने से पहले before you sleep जानना जरूरी है कि कभी आपने नोटिस किया है कि हम लाइफ में हर चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हैं. हर चीज को लेकर, करियर, मनी, एक्सपेक्टेशंस, टाइमिंग्स, जैसे सब कुछ कंट्रोल करना है. बस यही ह्यूमन नेचर है ना. लेकिन सच पता है क्या है, जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. कल का प्रॉमिस किसी के पास नहीं है. सच्चाई यही है. इसलिए इतना स्ट्रेस मत लो कि आज जीना ही भूल जाओ. समझे? कभी फैमिली के साथ बिना फोन के बैठो, कभी दोस्तों को बिना रीजन के कॉल कर लो, कभी अपने फेवरेट गाना फुल वॉल्यूम में सुन लो जो मैं यहाँ से प्ले करने वाला हूँ, और कभी बस खुद के साथ पीसफुली चाय पियो. क्योंकि एंड में ना याद डेडलाइंस नहीं रहती, याद रहते हैं वो मोमेंट्स जहां हमने सच में लाइफ को फील किया होता है. तो आज सोने से पहले खुद से एक प्रॉमिस जरूर करना, मैं सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा हूं बल्कि लाइफ को जी रहा हूं. समझे? और उसको जीने के लिए स्माइल करके लंबी सांस लेके फिर छोड़ना और उसके साथ सारी टेंशन्स भी रिलीज कर देना. अभी फिलहाल मैंने क्या बोला, एक बढ़िया सा गाना चलेगा तो वॉल्यूम थोड़ी सी हाई करके एंजॉय करना. जियो बिंदास.

ये वो कुछ रातें सॉन्ग से याद रहती हैं और कुछ आवाजें दिल में घर कर जाती हैं, नहीं? Hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आज की रात अगर आपको थोड़ा हंसा पाया, किसी पुरानी मेमोरी को वापस से याद दिला पाया, या एक पल के लिए स्ट्रेस आपका भुलवा पाया, तो समझ लेना मिडनाइट लाउंज में मेरा यहाँ होने का मकसद पूर्ण हुआ जनाब। आज हमने बात की रील्स की, रियलिटी की, स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन के नॉस्टैल्जिया की, और लाइफ को थोड़ा ऑल फील करने की। बस याद रखिए, लाइफ परफेक्ट कभी नहीं होती, पर हम इम्परफेक्ट मोमेंट में भी एक ब्यूटीफुल मेमोरी छुपा कर रखते हैं, जिसको खोजना हमें होता है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आकाश, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे नए सॉन्ग्स, नए इमोशंस और नए मिडनाइट वाइब्स के साथ। तब तक जियो बिंदास, बाय बाय, गुड नाइट।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: मॉर्निंग। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.